एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, अब जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

समाचारों का अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी दिल्ली से किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए आरंभ करते हैं आज की आराधना।

जीवन भर हमारा आशीर्वाद। छोटों पर रहे और हम ये कामना करते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहे। और हमारे देश में कई संतों ने अपनी अपनी वाणी से बहुत ही अलग तरह की बात हमारे जीवन के लिए की है। ये कबीर भजन है, आइए सुनते हैं।

दुखों को हरने वाले श्री राम का भजन अभी हमने सुना, स्वर लता मंगेशकर का था। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण को।

0: आराधना अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए खेती की बात में जानते हैं टमाटर की वैज्ञानिक खेती। वाचन स्वर है अभिनव गौरहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। खरीफ के समय अवैया है और हम जानथन कि भाई टमाटर जिन जिनिस हावे ओला बछर भर उगाए जा सकते हैं और एकर उत्पादन करना बड़ सरल हावे। टमाटर के उपयोग हम जानथन हर साग सब्जी में, आजकल टमाटर के केचप सास सब चीज में उपयोग आते और ए जिन समय में हम टमाटर अगर अभी लगाबो तो अवैया जिन 2 महीना में ही तो टमाटर के रेट बड़ा बढ़िया मिली। तो टमाटर के खेती जौन किसान भाई मन अगर करना चाहते हैं और टमाटर के वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं तो भूमि के चुनाव के बात करी बलुई दोमट माटी जेकर जल निकास बढ़िया हो टमाटर खेती पर उपयुक्त हो। पीएच मान के बात करी तो 6 से 7 के बीच तक पीएच मान हुए। भूया के तैयारी करे पर 2 से 3 पैत जोताई करे के बाद बखर चला के माटी ला बढ़िया तरह से भुरभुरा बनाना है और पाटा लगा के खेत ला बरोबर कर ले। बढ़िया उन्नत किस्म के बात करी लक्ष्मी 5005, सुपर लक्ष्मी, काशी अमृत, काशी अनुपम, काशी विशेष, पूसा सदाबहार, अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आभा, अर्का विशाल, जवाहर टमाटर 99। ये सुघर सुघर किस्म है और क्षेत्र विशेष में अपन अलग किस्म होते जिला देख के आसपास पूछ पाछ के भी बढ़िया किस्म लेके हमन फसल लगा सकत हन। फसल चक्र के बात करी रमकेरिया टमाटर खीरा, बरबट्टी टमाटर करेला, खीरा टमाटर लौकी के हम फसल चक्र घलाव ले सकत हन। बीजोपचार बड़ जरूरी होते। बीज के बात हमन ला बताएं, टमाटर के बीज लगाए से पहली बीजोपचार बड़ जरूरी होते। तो बीज ला नर्सरी में बोथन ओखर से पहली अगर हम केमिकल बीजोपचार करत हन तो थायरम या डाइथेन M45 नामक 3 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना होते। तो अपन व्यवस्था ला देख के हम उपचारित कर सकत हन जेखर से फफूंद से जिन समस्या आते ओ हमन ला आघू नहीं होही या बीज जनित जिन रोग हो जाते ओखर से हम बाँच सकत हन। रोपणी तैयार करे बर पौधशाला के माटी ला कीटाणु और रोगाणु रहित करना बड़ जरूरी होते। कर भर क्यारी मन ला सौर ऊर्जा से उपचारित करना है अर्थात पन्नी अगर हमन सो हो ही क्यारी जिन में हम बनाथन ओला कुछ दिन ढांक दिए भी घाम के समय है चारों कति ले हवा झन जावे तो अंदर से बढ़िया गर्मी हो के अंदर के जिन भी कीटाणु हो ही तेन रोग राय हो ही तेन जर भुजा जाये। पॉलीथीन से ढक के लगभग 20 से 25 दिन तक अभी रख सकत हन। बुआई के 10 दिन पहली हर क्यारी में 10 से 20 किलो बढ़िया सरे हुए गोबर के खाद और उर्वरक डालना है। बीज ला 1 इंच के गहराई में बोना है। बुआई के बाद क्यारी मन ला पैरा से ढांक देना है जेखर बाद तुरंत सिंचाई कर देना है। आवश्यकता के अनुसार सिंचाई और पौध संरक्षण हमन ला करत रहना है। जब हमार पौधा रोपाई बर तैयार हो जावे तो संझा के समय कतार से कतार 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी में रखत हुए रोपाई करना है। ओकर बाद सिंचाई कर देना है। टमाटर के फसल में खाद उर्वरक के बात करी जतका जेखर सो बढ़िया गोबर के खाद है ओला अपन खेत में मिला सकत है। ओखर बाद 50 किलो स्फुर, 50 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में तैयारी करत खानी डालना है। नत्रजन ला यूरिया के माध्यम से देथन त 3 भाग में बांटना है। 1/3 मात्रा पौधा लगाए के पहली और बाकी 2/3 ला पौधा लगाए के बाद 2 पैत 20 दिन और 40 दिन बाद डालना है। सिंचाई बरसाती फसल है तो हम सिंचाई ला नाली बनाए हैं तो सिंचाई बरसाती पानी में हो जाए। सिंचाई की व्यवस्था है तो समय देख के पौधा देख के हम सिंचाई कर सकत हन। खेत के खरपतवार ला साफ करे बर फसल वृद्धि बर निंदाई गुराई जरूरी होते जेकर ध्यान रखना है और हमन अपन हाथ से ही निंदाई गुराई करत रही। बरसात में फल मन ला सरे से बचाए बर पौधा ला बांस या लकड़ी के सहारा जमीन से ऊपर रखे जाते जेकर से फर हा लटक के बढ़िया बाढ़ते और चमकदार बनते। पत्ती मन में कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के 0.3% छिड़काव करे से फल हा नहीं फटे या कम फटते। छिड़काव पौधा लगाए के 1 महीना बाद 2-15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। ए हो इस टमाटर के वैज्ञानिक खेती। आगू टमाटर के फसल पर और जानकारी देवो। तब तक राम राम, जय जोहार।
0: टमाटर की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर जानकारी अभी हमने सुनी कार्यक्रम खेती की बात में। वाचन स्वर था अभिनव।

गौरहा का। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए, आइए सुनते हैं रामचरित मानस गान। आज मुख्य स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का है, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

श्री रामचरितमानस गान अभी हमने सुना। मुख्य स्वर वसंत साठे और श्रीकांत पारगांवकर का था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा क्रम नव विहान।

नवविहान कार्यक्रम में आज जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना की। श्रोताओं, घर केवल चार दीवारों और एक छत का नाम नहीं, बल्कि यह सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। जब किसी परिवार के पास अपना पक्का घर होता है तो उसके जीवन में स्थिरता आती है और भविष्य के प्रति भरोसा बढ़ता है। लेकिन आज भी अनेक परिवार ऐसे हैं जो कच्चे मकानों या असुरक्षित आवासों में रहने को मजबूर है। ऐसे परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी संचालित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है या जो कच्चे और जर्जर मकानों में रहते हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर किया जाता है। योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आवास निर्माण में शौचालय की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा मिले। इसके अलावा कई स्थानों पर बिजली, पेयजल और रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़कर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। एक बात विशेष यह कि ध्यान देने योग्य कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी बिचौलिए या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। योजना की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और पात्रता के आधार पर लाभ दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसों की मांग करता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। योजना में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। अनेक मामलों में घर का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर रखा जाता है। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। आगे की बात योजना के संदर्भ में यह है कि यदि आपने योजना के लिए आवेदन किया है तो समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी लेते रहें। इसके लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निकाय या योजना की आधिकारिक वेबसाइट की सहायता ली जा सकती है। लाभार्थी सूची भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। यह भी जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता और उससे जुड़ी जानकारी सही होना बेहद आवश्यक है। साथ ही आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेज अद्यतन होना भी लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है। अगर आपके परिवार या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अभी भी पक्का घर नहीं है तो उसे इस योजना की जानकारी अवश्य दें। सही जानकारी और जागरूकता ही योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाने में एक प्रभावी माध्यम हो सकता है।

एक पक्का घर केवल रहने की सुविधा नहीं देता बल्कि परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन का आधार प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसी सोच के साथ लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। आइए हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

पात्र परिवार इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी हमने कार्यक्रम नवविहान में आपको दी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हो चुके हैं। आइए अब आपको कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा 7:05 पर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से, और सुबह 10 बजे कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। 8:30 पर अमराई कार्यक्रम में आप सुनेंगे चतुर राम साहू और अनुराग ठाकुर, साधना यादव और कविता हिरकने के गाए लोकगीत। 9:55 और 11:55 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी रायपुर से। सुबह 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा। 12 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण होगा।

शाम 5 बजे हम सुनेंगे कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। 5:05 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें बेरा के गोट के अंतर्गत तिलहनी फसल पर बिजहा के चुनाव विषय पर जानकारी दी जाएगी। शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में आज की बात मेरी बाइसिकल विषय पर चर्चा होगी। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:20 पर, और कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 7 बजे।

चित्रपट संगीत सुनिएगा शाम 7:45 पर। आज रात 8 बजे हम सुनेंगे हर दिल की आवाज आकाशवाणी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में ये विशेष कार्यक्रम आज सुना जा सकता है। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, प्रस्तुति सहयोग रिकॉर्डिंग संपादन अंतरा चक्रवर्ती। रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा रात 8:20 पर।

साथ ही आपको बता दें कि आज की ग्राम सभा में भेंट वार्ता के अंतर्गत सफल कृषक से भेंट के क्रम में भवर सिंह कंवर एवं चैत्र कुंवर कंवर ग्राम केरा झारिया विकासखंड कोरबा जिला कोरबा के होंगे और भेंट करता होंगे पंचू भैया। कार्यक्रमों की जानकारी अभी हमने आपको दी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ेंगे।

0: सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी दिल्ली से किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है।

श्रोताओं, एक पहिए ने हमारे जीवन की गति कितनी बढ़ा दी है ना? सोचिए, हमारे आवागमन में पहिए का कितना बड़ा स्थान है। बेबी वॉकर से लेकर हवाई जहाज तक गोल पहिया कितना महत्वपूर्ण है। अपनी धुरी पर घूमता पहिया वहीं रहते हुए हमारी गति को दुगना और तिगुना या कहें कि कई गुना कर देता है। उपलब्ध जानकारियां हमें बताती है कि नवपाषाण काल में यानी कि 3500 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में, जब आधुनिक इराक कहते हैं उसे, वहां के लोगों द्वारा किया गया। और हां, खास बात यह है कि पहिए की शुरुआत परिवहन के लिए नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए की गई थी, जिसे हम कुम्हार का चाक कहते हैं आजकल। यानी दिलचस्प ये कि इसका आविष्कार किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं बल्कि मनुष्यों के विकसित होती समझ के खाते में आता है। या हम आज यह कह सकते हैं कि उस दौर में जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग या समुदाय रहा होगा, उन्होंने इसका ईजाद किया। तो उन तमाम कुम्हारों को आज हमें धन्यवाद देना चाहिए कि बिना पीटे गोलाई वाले बर्तन के साथ साथ उन्होंने हमें आवागमन की गति दी। कहते ये भी हैं कि भारी सामानों को ढोने के लिए पहले गोल गोल लकड़ी के लट्ठों का उपयोग किया जाता था। कुम्हार के चाक की लगभग आकृति का प्रयोग लगभग 300 ईसा पूर्व के लोगों ने रथों और बैलगाड़ियों में जोड़कर किया, जिसने व्यापार और यात्रा को एक अलग आयाम दिया। और सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन तब हुआ जब पहिए की धुरी तय की गई, यानी एक केंद्र जिसके चारों ओर गोलाई से पहिया घूमने लगा, लेकिन इसका केंद्र यानी कि एक्सल स्थिर रहा। हमारी साइकिल में होता है ना एक्सल, और उसके इर्द गिर्द स्पोक से एक रिंग जुड़ी होती है, ठीक वैसा ही। साइकिल से याद आया कि हम सभी ने अपने अपने घरों में साइकिल की जिद कभी ना कभी की होगी। कई बार हमारे घर के बड़े उत्साहवर्धन के लिए यह भी कहते रहे कि फला फला काम कर लोगे या परीक्षा में अच्छे नंबर लाओगे तो आपको साइकिल खरीद कर देंगे। घूमते हुए गतिशील पहिए का आकर्षण हमारे साथ बचपन से रहा है। हम में से बहुत से लोग के आसपास तीन पहियों वाली साइकिल की सवारी करते हुए फोटो भी होगी। पिताजी की बड़ी साइकिल चलाने और अचानक ब्रेक मारते हुए धड़ाम से गिर जाना, है ना? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। खैर, आगे की बातचीत जारी रखेंगे, अभी धीरे से ब्रेक लगाते हैं और आपको एक गीत सुनवाते हैं।

ये गाना शोर फिल्म का है। हम में से बहुत से लोगों को याद होगा कि कई बार हमारे गांव कस्बे में 7 दिन 15 दिन लगातार साइकिल चलाने वाले करतब्बा जाते थे। गोल घेरा सजा होता था, वो लगातार 7 दिन या जितने तयशुदा दिन साइकिल चलाते थे और दिन रात चलाते थे। मनोज कुमार ने जीवन की रेस को जीतने के लिए कुछ इसी तरह का दृश्य इस गीत में रचा था साइकिल के साथ।

यह जीवन चलायमान है और हम चर्चा कर रहे थे पहिए के मार्फत साइकिल की। बचपन का आकर्षक खिलौना या आकर्षक जरूरत, बिखरी हुई जानकारियां हमें बताती है कि साइकिल का आविष्कार मुख्य रूप से जर्मनी में हुआ। 1817 में जर्मन आविष्कारक बैरन कार्ल ने दो पहियों वाली मानव चलित मशीन बनाई और वो पहली मशीन थी, पर इसमें पैडल नहीं थी, जमीन पर धक्का देकर उसे चलाया जाता था। 1860 के दशक में फ्रांस के पियरे मिशो और पियरे लालमेंट ने पैडल को सीधे आगे के पहिए में जोड़कर पहली पैडल वाली साइकिल हमें दी। 1885 में सेफ्टी चेन वाली, या कहें चैन और पैडल वाली साइकिल हमारे पास पहुंची, जो अभी चल रही है उसी के अनुसार वो साइकिलों का आधार है। आविष्कार और प्रयोगों के दौर में फोटोग्राफ्स हमें ये समझें तो साइकिल हमें अलग अलग तरह की दिखाई देती है। सामने के बड़े पहिए और पीछे छोटे से पहिए वाली साइकिल आपने चित्रों में देखी होगी, या कहें कि सामने के बहुत छोटे छोटे पहिए और पीछे के बहुत बड़े बड़े पहिए, ऐसी साइकिल भी चित्रों में आपने देखी होगी। एक बराबर पहियों वाली आधे गोल से हैंडल वाली साइकिल जो कि रेस में काम आती है, पीछे कैरियर लगी साइकिल, बहुत सारी साइकिलों के चित्र हम देखते सुनते रहे हैं और कई साइकिलों को हमने अनुभव भी किया है। याद कीजिएगा हमारे आम घरों की साइकिल भी कितने तरह के प्रयोग हुए। भारत में साड़ी पहनकर चलाने के लिए बिना डंडे वाली लेडीज साइकिल आई, छोटे बच्चों को बिठाने के लिए हैंडल पर सामने डलिया लगाई जाने लगी, कभी हैंडल पर सामान रखने की डलिया भी बन जाती। वो सामने के डंडे पर एक छोटी सी गद्देदार सीट होती जिस पर दोनों तरफ पैर रखकर कई

0: लोग बैठे होंगे अपने बचपन में। पीछे का कैरियर कभी अपने दोस्त या लाइफ पार्टनर को बैठाने के लिए काम आता, तो कभी सामान बांधकर ले जाने के लिए। हमारे बुजुर्गों के पास भी कई किस्से होते थे कि अपनी पत्नी को पीछे बिठाकर 20-30 किलोमीटर दूरी तय कर हम फिल्म देखने जाया करते थे। ऐसे किस्से हमने आम तौर पर सुने हैं। शुरुआती दिनों में साइकिल नामक वाहन घर पर होना समृद्धि का प्रतीक होता था। दो दो तीन तीन दोस्तों के साथ एक साथ बैठाकर मैदान पे करतब करना, चोरी चुपके से पिता की साइकिल पर एक चक्कर लगाकर आकर धीमे से घर पे वापस उसी जगह पर रख देना। साइकिल के किस्से अनगिनत है ना। पहले भाई बहनों को, घर की महिलाओं को स्कूल कॉलेज छोड़ने जाते थे, पर जैसे ही लेडीज साइकिल का चलन बढ़ा और महिलाओं की आजादी को पंख लगे, इसलिए तो कई सरकारों की स्कूलों में छात्राओं को साइकिल बांटने की पहल की प्रशंसा होती है। जो गांव कस्बे की बच्चियां प्राइमरी के बाद दूर के मिडिल स्कूल या अगले किसी गांव के स्कूल नहीं जा पाती, वो अब मिडिल और हाई स्कूल की ओर रुख करने लगी है, और वो साइकिल के सहारे। हम छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में नीली सफेद ड्रेस वाली बच्चियों को झुंड के रूप में दूर स्कूल से आते जाते देख पाते हैं। साइकिल पर पढ़ने जाती वो उन बच्चियों का चित्र बहुत सुंदर और सुकून देने वाला होता है। कई देशों में और भारत के कई शहरों में साइकिल लेन अलग से होती है, ताकि साइकिल चालक तेज रफ्तार ईंधन वाले वाहनों से अलग और सुरक्षित चल सके। कई शहरों में ई बाइक स्टैंड होते हैं, आप उनका उपयोग अपनी पहचान स्कैन कर सकते हैं। विदेशों में ये व्यवस्था बहुत प्रचलित है। आप एक स्टैंड से साइकिल उठाकर दूसरी जगह चले जाएं, उस जगह एक और स्टैंड होता था, वहां उस साइकिल को पार्क कर दें। पर्यावरण सम्मत आवाजाही और सेहतमंद यात्रा का एक बड़ा उदाहरण है यह। तो हम जब भी डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिक वाहनों में सवार सड़क पर हूं, तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि सड़क पर जो भी साइकिल हो उस पर सवार या व्यक्ति का सम्मान करें, और अपनी गति से साइकिल वाले को कोई भी परेशानी ना होने दें। तो सड़क पर सावधानियों की बात हो ही रही है, तो आइए अब सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर। प्रवाचक है उमाशंकर पांडे।
1: यात्रा संबंधी सूचनाओं के साथ दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के लिए मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस अवसर पर हरियर ऑक्सीजन के सदस्यों के द्वारा स्वस्थतन चैतन्य मन के आशय से शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह साइकिल रैली आज प्रातः नेहरू चौक से चलकर राजेंद्र नगर चौक, सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, सीएमडी चौक, तारबहार चौक, टैगोर चौक, पुराना हाईकोर्ट, गांधी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, देकी नंदन चौक होते हुए अरपा रिवर व्यू में संपन्न होगी। रैली में बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे भाग लेंगे। सभी से अनुरोध है सड़क में दो दो के जोड़े में तथा एक के पीछे एक चले, पूरी सड़क में बिखर कर न चले, ताकि सड़कों में चल रहे शेष वाहनों का सकुशल आवागमन बना रहे। मित्रों, आज ही शहर में NSUI के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में रैली एवं घेराव प्रदर्शन किए जाने की योजना है। इस संबंध में आज दोपहर 2 बजे बिलासपुर स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस के सामने मंची कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तथा शाम 4 बजे यहां से रैली स्वरूप चलकर नेहरू चौक के पास घेराव प्रदर्शन किए जाने की योजना है। रैली में शामिल सभी सदस्यों से अनुरोध है, नेहरू चौक हमारे जिले का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चौक है। यहाँ दिन भर यातायात का दबाव बहुत अधिक रहता है, इसलिए यह ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन से शासकीय कार्य या आम यातायात बिल्कुल भी बाधित ना हो। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों को प्राथमिकता के तौर पर तत्काल साइड देवें। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव-गांव तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। दोस्तों, प्रायः देखा

0: जाता है, हमारे युवा साथी अपने दो पहिया वाहनों में साइड ग्लास अर्थात आईना कतई पसंद नहीं करते, जो सर्वथा अनुचित है, विधि विरुद्ध है, क्योंकि सुरक्षा की नजर से साइड ग्लास बहुत आवश्यक है। इससे हमारे पीछे आने वाले वाहनों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है, जिससे हम सड़क में सुरक्षित चल पाते हैं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: यह था ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर। श्रोताओं, इतनी सारी बातें पहिए से आरंभ होकर साइकिल पर इसलिए हो रही है कि आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे। आज पर्यावरणीय परिस्थितियों के मद्देनजर साइकिल सबसे जरूरी मशीन है। हमारे स्वास्थ्यगत पैमाने पर भी ये खरी उतरती है। आंकड़ों को समझें तो नीदरलैंड दुनिया का सबसे प्रमुख साइकिल उपयोगकर्ता देश है। वहां की आबादी के 99% लोग साइकिल का इस्तेमाल रोजमर्रा में करते हैं। डेनमार्क का कोपनहेगन दुनिया की साइकिल राजधानी माना जाता है, जहां आधे से ज्यादा यात्री दैनिक रूप में साइकिल का प्रयोग लाते हैं। जर्मनी और स्वीडन का साइकिल ट्रैफिक का हिस्सा, उनकी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और लगातार विकास कर रहा है। चीन में भी 50 खरब से अधिक साइकिलें मौजूद हैं। भारत में प्रति व्यक्ति 0.46% साइकिलें उपलब्ध है। ग्रामीण यातायात का अभी भी एक बड़ा हिस्सा साइकिल वहन करती है, पर बढ़ते मोटरसाइकिल के प्रभाव से साइकिल बढ़ने की संख्या जरूर प्रभावित हुई है। अमेरिका और ब्राजील में उनके कुल यातायात का साइकिल उपयोग सिर्फ 1% से कम है। और आंकड़ों से इतर बात समझें तो साइकिल आज सबसे स्वास्थ्यवर्धक साधन है। इसका उपयोग वर्जिश में बढ़ा है और दैनिक यातायात में लगातार घट रहा है। पर्यावरण और प्रकृति सम्मत खान पान से हम दवाइयों से बचते रहते हैं, ठीक वैसे ही दैनिक यातायात में साइकिल के चलन बढ़ने से हमें साइकिल पर अलग से वर्जिश नहीं करनी पड़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। जैसे रेडियो आपका स्वास्थ्य मनोरंजन करता है, वैसे ही साइकिल आपके स्वस्थ यातायात का साधन है। कुछ लोग तो खेत की मेढ़ों पर साइकिल के हैंडल पर रेडियो लटकाए गांव भ्रमण याद कर रहे होंगे। आइए यादों के सफर में एक फिल्मी गीत और जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं।

गीत के साथ कुछ बातें और समझें तो साइकिल से गिरकर घुटने छिल जाना याद है ना, चुन्नी साइकिल के एक्सल में फंस जाना, चेन उतरना और दोस्तों के बीच चेन चढ़ाकर प्रशंसा हासिल करना, पंचर दुकान में अपनी साइकिल जल्दी बन जाए इसका इंतजार करना, पंचर बनाते हुए व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखना और उसका गणित समझना, हैंडल पर राखी या पूजा का धागा बांधना, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, ये सब यादें ही तो हैं। पर सेहत का खजाना साइकिल की सीट हम सब का इंतजार आज भी कर रही है। तो साइकिल चलाते रहें, सेहतमंद रहें।

है आज के बाइसिकल डे पर। कार्यक्रम आज सुबह में इतना ही, और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में आपको वो गीत सुनवा सकें जो कि साइकिल के साथ हिंदी फिल्मों में फिल्माए गए हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम आज सुबह से सुनील चिपड़े को दीजिए इजाजत। नमस्ते।

0: आज सुबह।
1: कार्यक्रम आज सुबह अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है कार्यक्रम यादों की झरोखे से का।

इस म्यूजिक के साथ ही फिल्म पर्दे पर लड़कियों का एक बड़ा झुंड साइकिल पर सवार हमें दिखता है। जी हाँ, ये पड़ोसन फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और आशा भोसले द्वारा गाया गया, और सारा बानो अपनी सहेलियों के साथ साइकिल पर पिकनिक पर जाती हुई दिखाई देती है और गुनगुनाती है।

0: कार्यक्रम यादों के झरोखे से का पहला गीत आपने सुना फिल्म पड़ोसन से। लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ साथियों की आवाजें थी। राजेंद्र किशन का लिखा हुआ गीत और आरडी बर्मन का संगीत था। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म नजराना से। मुकेश और आशा भोसले की आवाज है, राजेंद्र किशन का गीत और रवि का संगीत। राज कपूर और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गीत है। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की ये फिल्म है और ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर साइकिल से राज कपूर और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गीत।
1: सब्सक्राइब टू शिमारू।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म अपना घर से। प्रेम धवन का लिखा हुआ गीत, रवि का संगीत, सुमन कल्याणपुर की आवाज मोहम्मद रफी के साथ। और अपना घर के इस गीत को भी साइकिल के साथ फिल्माया गया था। दृश्य शुरू होता है एक पुल से, एक साइकिल चली आ रही है, उसमें हीरो साइकिल चला रहे हैं और हीरोइन सामने डंडे पर बैठी है। और जी हाँ, साइकिल के हैंडल पर एक छोटी सी लाइट लगी है जो कि साइकिल के ही चक्के के घर्षण से जलती है। आपको ये याद होगा कि बहुत सारे लोग साइकिल पर सामने लाइट लगाया करते थे। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं।

0: कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के झरोके से, और हमारे बहुत सारे साथी इसे सुन रहे होंगे। और हमारे एक साथी ने हमें एक मैसेज किया, जय अमर भाई महावीर बरगा, आप जानते ही हैं। उन्होंने हमें कहा कि पेट और पेट्रोल दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों का इलाज एक ही है कि साइकिल चलाएं। जी हाँ, इस छोटे से नोट के साथ कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको बेवकूफ फिल्म का गीत। आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, मजरू का लिखा हुआ, एस डी बर्मन का संगीत है। किशोर कुमार और माला सिन्हा पर यह फिल्माया गीत है। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का ये भी गीत है, और इस गीत में किशोर कुमार साइकिल चला रहे हैं और माला सिन्हा पीछे कैरियर पर बैठी हुई है।
1: माइकल है माइकल जो नहीं, साइकिल भी नहीं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: साइकिल की घंटियां हमारे जीवन में अपने स्वास्थ्य का परिचायक बन जाए, इस उम्मीद के साथ अगले गीत की ओर बढ़ते हैं जो कि हमने लिया है फिल्म जिद्दी से।

जी हाँ, हमारे भी जीवन में फिर से वो साइकिल आ जाए जैसे कि बचपन में आती थी और हम बड़े उत्साहित होकर घर की देहरी पर खड़े रहते थे कि पापा रिक्शे में साइकिल लेकर के आए हैं। एक खबर, एक मैसेज और मिला है, वो ये कि आस का पंछी इस फिल्म में भी साइकिल पर एक अच्छा गाना है। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम से विदा दीजिए, 7:55 होने को हैं और हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहेंगे। महिलाएं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं की वीरता के लिए दिया जाता है। साथ ही समाज सेवा, पर्यावरण और खेल, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकती हैं। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकती हैं।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं और आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे हम सुनेंगे कार्यक्रम हर दिल की आवाज आकाशवाणी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम होगा। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, प्रस्तुति सहयोग, रिकॉर्डिंग और संपादन अंतरा चक्रवर्ती का। तो जरूर सुनिएगा आज रात 8 बजे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 8 बजने को है। और अब जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर

0: महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों करोड़ लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम

0: बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में

ये गीत है अनुराग ठाकुर, कविता हिरकने और साधना की आवाजों में।

आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमराई, और आज हम चतुर्राम साहू और साथी अनुराग ठाकुर, साधना यादव, कविता हिरकने के गीतों को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगला गीत चतुर्राम साहू और साथियों के दल के द्वारा।

0: अगला गाना हम सुनने वाले हैं भैया लाल हेड़ऊ का गाया हुआ।
1: छनर छनर पैरी बाजे छनर छनर खनर खनर चूरी हाथत कुलकत।

ये थे भैया लाल हेडो। आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमराई आकाशवाणी बिलासपुर से। कांति साहू और चतुर राम साहू को सुनेंगे।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉ. टीडी पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने का विषय होगा खरीफ फसलों के उन्नत किस्मों का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टर। ये विषय का समय होगा सुबह 10:30 से 11 बजे तक, और 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बीज एवं पौध उपचार का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592।

0: ये थे कुलेश्वर ताम्रकार और कविता हिरकने। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से अमराई कार्यक्रम का प्रसारण अभी कर रहे थे। सुबह के 9 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों से।
1: स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, शांतनु मोइत्रा का संगीत, ईशान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना पीके फिल्म से। चित्रलोक कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना।

रोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाज़ों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाज़ें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में। इरशाद कामिल ने लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, इरशाद कामिल ने लिखा है और AR रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसेक सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

फिल्म खामोशियां का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी मैं।
2: और मैंने पूनम से शादी की। आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूं जीवन में एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूं, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है और उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
0: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार हैं सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली कहते हैं मुझको रस रसीली।
0: दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया है।

की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माई गॉड में इस गाने को विशेष तौर पे शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब धूम मचाई।

1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।

साक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़े उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है रावडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

विविध भारती के कार्यक्रम हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:55 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी रायपुर से जुड़ेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिंह। आज के मुख्य समाचार। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में गठित विशेष रेस्क्यू टीम द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अभियान चलाकर बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि बच्चों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष भर यह कार्य जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सलेंस अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रीड़ा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक

डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चंदेनार साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। ये सभी लोग मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य में काम कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुपेला निवासी एक व्यक्ति ने अधिक मुनाफे का लालच देकर कई लोगों से रकम निवेश कराई और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार, लैपटॉप, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, चेकबुक और लेन देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट दिया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रभाव जारी रहेगा। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के लिए कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। इस दौरान रेलवे स्टेशन से की तरफ अंडर ब्रिज यातायात को बंद किया जाएगा। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक स्थित झींगा बहाल क्षेत्र में मंगलवार को 2 तेज रफ्तार वाहनों के आमने सामने से हुई टक्कर में दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक वाहन चालक की मौत हो गई जबकि दूसरे वाहन के चालक को बचा लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़कों यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के हेलो आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला।
1: कतिया पारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन बिलासपुरिया बोल रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्ते सुशील जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ पद्मा जी। गर्मी है, इतना गर्मी है कि कुछ पूछो मत। पानी गिरता है, थोड़ा राहत मिलता है।
0: हाँ, अगले दिन उससे ज्यादा गर्मी लगने लगती है।
1: जी जी, वो क्या है, उमस बढ़ जाता पानी गिरने के बाद। उमस इतना बढ़ जाता है कि कुछ पूछो मत।
0: तो पौधारोपण वगैरह की तैयारियां चल रही हैं क्या? आप तो जून का महीना आ गया।
1: जी जी, वो तो समय आ रहा है ना वो पद्मा जी। जैसे बरसात लगेगा हमको कम से कम एक पौधा लगाना बहुत जरूरी है। और मैं अपने जितने श्रोता भाई है ना, सबसे यही निवेदन करता हूँ कि इस बरसात में।
0: हेलो, आपकी आवाज कट कट के आ रही है सुशील जी, आप अपनी फरमाइश बता दीजिए, कहीं कॉल न कट जाए।
1: प्रोफेसर के गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं?
0: हाँ नमस्कार, हेलो, आपकी पसंद, मैं मुकेश स्वर्णकर बोल रहा हूँ।
1: नमस्ते मुकेश जी, कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप पद्मा जी बोल रहे हैं क्या?
1: हाँ पद्मा बोल रही हूँ, बताइए।
0: हाँ नमस्ते जी, और क्या हाल चाल है बताइए बिलासपुर का?
1: बस अब आपसे सुनना चाह रहे हैं वहाँ के हाल चाल, बिलासपुर तो ठीक ठाक है।
0: अरे हमारे रायपुर में क्या बताएं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: ऐसा? हमारे बिलासपुर भी उसकी सहेली है, वहाँ यहाँ भी पड़ रही है। क्या करते हैं मुकेश जी?
0: मैं टीचर हूँ और पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ।
1: हाँ हाँ हाँ, अभी तो छुट्टियाँ चल रही होंगी।
0: हाँ अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, और अगर बारिश नहीं हुई तो छुट्टियाँ बढ़ भी सकती हैं।
1: तो इन दिनों आपका क्या रूटीन रहता है?
0: अरे अभी तो क्या है कि मेरे यहाँ मेरी मैडम जो है यहाँ हीरापुर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाती है।
1: अच्छा।
0: तो बच्चे को लेकर के मैं भी साथ में आ जाता हूँ।
1: तो सामान्य बच्चों में और उनमें जो पढ़ाने की विधियाँ हैं वो भी अलग हैं, जो देख
0: हाँ,
1: नहीं पाते
0: जो
1: हैं।
0: ब्लाइंड बच्चे हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: हम लोग जो सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं वो हमारे पुस्तक ब्रेल लिपि की होती है।
1: तो लेकिन तो उनके ग्रेस्पिंग पावर में भी अंतर पाते हैं आप बच्चों के, जो जल्दी
0: हाँ,
1: शायद वो ग्रहण कर पाते हैं ऐसा लगता है, जो देख नहीं पाते हैं?
0: हाँ जो देख नहीं पाते ना वो लोग जल्दी ग्रहण कर लेते हैं,
1: छू के या सुन के। चलिए गीत बता दीजिए मुकेश जी।
0: फिल्म बरसात पिक्चर का कोई भी गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी।
1: हेलो
0: जी जी, नमस्ते, बताइए।
1: हाँ, बिलासपुर से गोविंद पमनानी बोल रहा हूँ मैडम। हरिओम जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पुराना बस स्टैंड से गोविंद राम पमनानी हरिओम बोल रहा हूँ जी। मैडम
0: कैसे हैं गोविंद जी?
1: बस आशीर्वाद है भगवान की, आप लोगों के सहयोग साथ है और बहुत अच्छे से चल रही गर्मी, बस उसी का मजा लेते हुए दुकान पे बैठा हुआ हूँ।
0: वाह, ये तो बहुत अच्छी सकारात्मक बात कही है आपने, सारे खुश हो गए हम। बताइए क्या करते हैं?
1: विगत हम 50 वर्षों से आपके रेडियो के श्रोता रहे हैं और रेडियो रिपेयरिंग की भी हमारी दुकान है। जिन दिनों में रेडियो में लाइसेंस लगता था उन दिनों से हमारी दुकान है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो अभी नए श्रोता हैं उनके लिए तो ये नई बात है कि लाइसेंस लेना पड़ता था पहले।
1: हाँ, लाइसेंस लगता था और उन दिनों में हम बिलासपुर बस स्टैंड के एरिया इंस्पेक्टर भी थे, जो हम लाइसेंस बनवा के वैलिड करवाते थे पोस्ट ऑफिस से।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: और उन दिनों इसका क्या शुल्क होता होगा?
1: 10 से 20 रुपए सिर्फ नॉर्मल शुल्क था। हम कस्टमर जो आते थे रेडियो रिपेयरिंग के लिए, उनको लाइसेंस के लिए प्रोरित करते थे कि आप लाइसेंस बनवाइए और वो हमें दे देते थे कि लाइसेंस आप बनवा दीजिए।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। फरमाइश बता दीजिए।
1: फरमाइश अब यही है, हालात देखते हुए प्रदीप का, उस दिन प्रदीप की बिटिया आई थी हमारे रेडियो इसमें, तो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, बस यही सुनने का बहुत।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद पे सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: मेहरबानी जी, मेहरबानी।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: जी, मैं चांदनी ब्रिजानी बोल रही हूँ।
0: कैसी हैं चांदनी जी?
1: बढ़िया बढ़िया। आप
0: कहाँ से बोल रही
1: कैसी
0: हैं?
1: हो दीदी? मैं बिलासपुर से बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़
0: अच्छा, मैं भी अच्छी हूँ। क्या करती हैं चांदनी?
1: जी। मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो क्या
1: तो
0: बन रहा
1: आपको
0: है
1: मैं
0: इन दिनों? क्या खाना पीना का शेड्यूल रहता है गर्मियों में परिवार के
1: गर्मियों
0: लिए?
1: में तो बहुत कुछ बनता है मैम, बहुत। ना जैसे लस्सी हो गई, छाछ हो गया, जो बंगले रहते हैं ना, आम का जूस, बंगले का जूस, बहुत कुछ चलता है घर पे। मैं तो खाना ही नहीं पसंद करती हूँ, सिर्फ जूस ही जूस पीती हूँ।
0: तो वो तो आप ना, और
1: नहीं,
0: बाकी लोगों का क्या हाल रहता है?
1: बाकी लोगों को भी वही देती हूँ।
0: अच्छा, तो सेम
1: हाँ,
0: टेस्ट
1: वही पीते
0: सबका,
1: जी।
0: सेम
1: हाँ
0: टेस्ट
1: हाँ
0: पे सब खुश हैं।
1: हाँ। और उन खाना भी बनता है, जिनको खाना चाहिए वो खाना खाते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। परिवार को स्वस्थ रखने में आपका सबसे बड़ा हाथ होता है हाउसवाइफ का, है ना?
1: जी
0: बताइएगा, गीत कौन सा सुनेंगी?
1: मैम, सबसे पहले तो आपसे मिलकर बहुत खुशी। मैं इतने दिनों से फोन लगाती थी, लगता ही नहीं था। आज अभी अभी जस्ट मैंने रेडियो में सुना कि ये नंबर है, लिखिए। मैंने
0: चलो,
1: तुरंत लिखा, तुरंत कॉल किया है, और
0: बहुत
1: बार बार
0: खुशी हुई
1: करती जा
0: हमें
1: रही, और
0: तो।
1: अभी लग गया। बहुत खुश हूँ मैं।
0: हमें भी बहुत खुशी हुई, हमारे परिवार में एक और मेंबर का इजाफा हो गया रेडियो परिवार में। चलिए बताइए, गीत
1: और
0: बता
1: आप
0: दीजिए।
1: जी, मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है, 2 मिनट बात
0: हाँ,
1: कीजिए।
0: जरूर जरूर
1: जी
0: बताइए।
1: जी
2: हेलो,
0: हेलो,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते बेटा।
2: जी मैम, मेरी मम्मी है और उनसे 10 से 15 साल से, वो जब से शादी करके आई है यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ अकलतरा में, वो तब से ही वो प्रयास ही करते रहती हैं कि हाँ भाई नंबर लगे लगे लगे। आज फाइनली लकी थी यार,
0: तो चलिए,
2: वो इनका फोन लग गया।
0: उनकी पसंद का गीत बता दीजिए फिर आप।
2: तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है मेरी माँ, वाला गाना।
0: चलिए, माँ तो प्यारी होती ही है, बच्चों के लिए
2: बिल्कुल,
0: हमेशा निछावर करती है सब कुछ। चलिए, आपकी पसंद पे सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: ये आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा चांदनी जी, और आपके
1: यू
0: बेटे से भी।
1: जी। थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: हेलो,
1: नमस्कार। गंगानगर बिलासपुर से मैं उमाशंकर पांडे।
0: नमस्ते पांडे जी, कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ।
0: इन दिनों क्या चल रहा है गर्मियों में?
1: हाँ, गर्मी तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं अपने जो जॉब से जुड़ा था उसके लिए प्रयास लगातार करते रहता हूँ। कहीं कहीं कहीं समर कैंप चल रहा है, वहाँ भी जाकर बच्चों को बताना या फिर जो भी है युवाओं को, ये सब काम मैं लगातार कर रहा हूँ।
0: छोटे छोटे बच्चे भी आजकल, क्योंकि उनको भी छोटी छोटी साइकिल्स मिलती हैं, तो
1: जी।
0: वो भी अपने बड़ों को देखते हैं, और कुछ को तो जैसे हम रील्स वगैरह में भी देखते हैं, वो हेलमेट के बगैर वो चलाते नहीं हैं, छोटी छोटी गाड़ियां भी। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है कि बड़ों को देख के छोटे भी सीखते हैं, प्रेरणा ले रहे
1: हाँ,
0: हैं।
1: बहुत जरूरी, अच्छा है, और हम उनके स्तर की भी जानकारी देते हैं, और साथ ही में इस संदेश के माध्यम से उनके अभिभावकों से, माता पिता से भी एक कहूंगा, जब बच्चों के साथ नहीं आप हैं, आप के वाहन में वो बैठे हैं बच्चे, तो वो काम बिल्कुल मत करें जो करना वर्जित है। जैसे आप बाइक में जा रहे हैं, बच्चा आपके साथ बैठा है तो फोन आ गया, आप चलती गाड़ी में फोन से बात मत कीजिए, कुछ क्षण के लिए किनारे गाड़ी रोक लीजिए, बातें करें, फिर आगे बढ़ें। इसी प्रकार घर से निकलें तो हेलमेट लें, और जहां तक संभव हो बच्चे से खुद बोलिए कि पप्पू मेरा हेलमेट ला दे। ये सारी बातें, इनका छोटा सा प्रयास, बच्चे के जो बाल मन है, अमिट स्याही से हस्ताक्षर होगा हमेशा हमेशा के लिए, और निश्चित रूप से बच्चा वो नियम का पालन करेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी। अब गीत बता दीजिएगा, फरमाइश अपनी।
1: मेरा नाम जोकर का है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
0: वाह, राज कपूर साहब का कल्ट सॉन्ग है ये।
1: जी जी जी,
0: बिल्कुल आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते,
1: मैं सार्थक बोल रहा हूँ, पौड़ी तखतपुर से।
0: कैसे हैं सार्थक?
1: एकदम बढ़िया दीदी।
0: क्या
1: आप लोग कैसे हैं?
0: हम सब भी बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस मेरी डेयरी है तो भाई गाय गौ सेवा चल रहा है दीदी,
0: ये तो
1: क्योंकि
0: बहुत पुण्य का काम है, सबके लिए पेट भरना, साथ में गाय माता की सेवा, ये
1: जी दोनों हो जाता है।
0: दोनों हो
1: और
0: जाता
1: हाँ,
0: है।
1: आमदनी भी मिल जाती है और गौ सेवा भी हो जाता है दीदी।
0: पहले में और अभी में क्या अंतर आया है इस काम में?
1: जैसे पहले बहुत सारा हम लोग को जानकारी नहीं था, अब तो रेडियो के माध्यम से भी हम लोग को खूब सारी जानकारियां मिल जाती हैं। बीच बीच में जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन लोगों से बात होती है तो उनसे भी हम लोग को मदद मिलती है। और अब जो दूध वगैरह जो बेचना है ना, उसके लिए अलग से जगह हो गई है, वहां मतलब हम लोग बेच सकते हैं दूध,
0: ये तो
1: उसके
0: बहुत
1: लिए
0: अच्छी।
1: दिक्कत नहीं होती। पहले वो परेशानियां होती थी और कीमत भी अच्छा मिल जाता है।
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप फरमाइश बता दीजिए।
1: मैंने प्यार किया फिल्म से कोई सभी गीत सुना दीजिएगा दीदी।
0: चलिए, आपकी पसंद।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं?
0: जी मैं अश्विनी कुमार नेताम।
1: कहाँ से बोल रहे हैं अश्विनी?
0: ग्राम खोड़ अकलतरा।
1: क्या करते हैं?
0: मैं पान दुकान चलाता हूँ।
1: और खाते भी हैं?
0: पान खाते हैं ना।
1: अच्छा, कौन सा, मीठा पान या फिर जो गड़बड़ वाला है?
0: मीठा पान।
1: क्योंकि देखिए, जो देखते हैं घर के छोटे वही सीखते हैं, बड़ों से जो देखते हैं, तो इसीलिए हमें भी ध्यान रखना होगा हमारी आदतों का। कौन सा गीत सुनेंगे अश्विनी?
0: मैं राजा हिंदुस्तानी का सुन।

0: हेलो, आपकी पसंद से मैं पद्मा। नमस्ते,
1: नमस्कार मैम, मैं संजना साहू जानकी चौपड़
0: कैसी हो
1: से।
0: संजना, क्या करती हो?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं राष्ट्रीय हॉकी

0: हॉकी खिलाड़ी हूँ और हॉकी के क्षेत्र में ही काम कर रही हूँ और आगे मेरी मतलब मेरी पढ़ाई सारी शिक्षा में अभी बैचलर की डिग्री कंप्लीट हुई है और आगे मेरी मास्टर की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है।
1: बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है तुमसे बात करके। तो कैसे इस फील्ड में आना हुआ?
0: जी मैम, मैं हॉकी खिलाड़ी तो पिछले 10 साल से रही हूँ, पिछले 10-12 साल से मेरा खेलना या हॉकी की शुरुआत हो चुकी है और अभी इसी क्षेत्र में एक कोच के रूप में और एक अंपायर के रूप में भी काम कर रही हूँ। और अंपायरिंग जहाँ तक मेरी अभी स्टेट लेवल के रूप में हो रही है।
1: बड़ी अच्छी बात है और सारे लोग इंस्पायर हो रहे होंगे तुम्हारी इन बातों से। और फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है ही, इसे खेल भावना भी आती है और मानसिक रूप से भी हम अपने आप को इसमें बिजी रखते हैं और स्वस्थ रहते हैं। चलो अब गीत बता दूंगी क्या फरमाइश?
0: जी मैम, पतझड़ सावन बसंत बहार ये वाला गीत सुना।
1: सिंदूर फिल्म का? बिल्कुल
0: जी मैम, जी
1: आपकी पसंद पे पहुंच रहा है ये गाना आपके लिए।
0: जी धन्यवाद।

0: तो ये था हमारा आज का हेलो आपकी पसंद, जिसमें हमें तकनीकी सहयोग मिला गौरी शंकर कौशिक का। तो अब चलते चलते यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए हमें उस कार्यक्रम से जिसका नाम है
1: हेलो।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद आप सुन रहे थे, प्रस्तुति थी पद्मामणि की। और अब समय है ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर का।
4: शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह साइकिल रैली आज प्रातः नेहरू चौक से चलकर राजेंद्र नगर चौक, सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, CMD चौक, तारबहार चौक, टैगोर चौक, पुराना हाईकोर्ट, गांधी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, देकी नंदन चौक होते हुए अरपा रिवर व्यू में संपन्न होगी। रैली में बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे भाग लेंगे। सभी से अनुरोध है, सड़क में दो दो के जोड़े में तथा एक के पीछे एक चलें। पूरी सड़क में बिखर कर न चलें, ताकि सड़कों में चल रहे शेष वाहनों का सकुशल आवागमन बना रहे। मित्रों, आज शहर में NSUI के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में रैली एवं घेराव प्रदर्शन किए जाने की योजना है। इस संबंध में आज दोपहर 2 बजे बिलासपुर स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस के सामने मंची कार्यक्रम आयोजित किया गया है तथा शाम 4 बजे यहां से रैली स्वरूप चलकर नेहरू चौक के पास घेराव प्रदर्शन किए जाने की योजना है। रैली में शामिल सभी सदस्यों से अनुरोध है, नेहरू चौक हमारे जिले का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चौक है। यहां दिन भर यातायात का दबाव बहुत अधिक रहता है, इसलिए यह ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन से शासकीय कार्य या आम यातायात बिल्कुल भी बाधित ना हो। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों को प्राथमिकता के तौर पर तत्काल साइड देवें। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव-गांव तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। दोस्तों, प्रायः देखा जाता है हमारे युवा साथी अपने दो पहिया वाहनों में साइड ग्लास अर्थात आईना कतई पसंद नहीं करते, जो सर्वथा अनुचित है, विधि विरुद्ध है, क्योंकि सुरक्षा की नजर से साइड ग्लास बहुत आवश्यक है। इससे हमारे पीछे आने वाले वाहनों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है, जिससे हम सड़क में सुरक्षित चल पाते हैं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
3: आपने अभी कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद और ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर।

आइए आपको एक सूचना दे दें। महिलाएं और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालकों बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना हम आपको दे दें कि आज रात 8 बजे हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम हर दिल की आवाज किसान वाणी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर विशेष कार्यक्रम होगा। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। प्रस्तुति सहयोग, रिकॉर्डिंग और संपादन अंतरा चक्रवर्ती का। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है।

0: जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोबी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
0: जी,
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ, जरूर।
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट दो कुबड़ वाले होते हैं
0: जी,
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
0: जी,
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी,
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी,
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी,
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करें, क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।

0: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? मैं
0: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
1: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
0: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
1: ये रीछ तो मुझे सूंघ रही है, मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
0: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
1: बच गए, लगता है रीच चला गया।
0: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ,
0: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
0: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
1: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
0: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे इस बार भी नहीं लगी। अरे
5: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
7: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है,

0: चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ,
6: हम
5: सब तैयार हैं।
6: किसी भी हाल में
5: जंगल कटने
6: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार।
7: मिट्टी, पानी और बयान।
3: मिट्टी, पानी और बयान।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे क्या कर रहे हो?
9: मुंह के ताक रहे हो? अजय शुरू मारो पैर।
8: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चिपक जाएंगे पेड़ों से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों

0: आनी चाहिए तुझे।
1: आगे बढ़ो।
0: अरे कहाँ से?
1: दो मिनट की बात तो मैं बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शिव।
0: पैरों से छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे
0: बहनों। आगे बढ़कर छिपक जाओ पेड़ों से।
3: हाँ, हम छिपक जाएंगे।
1: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
1: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
4: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
4: लगता है आज मैं हवा में उड़ रहा हूँ।
5: कुछ
4: ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। ये क्या टकरा गया यार? अरे चिराग, ये क्या अलाउद्दीन का चिराग है? घिस कर देखता हूँ।
6: क्या हुक्म है मेरे आका?
4: क्या तुम सब कुछ कर सकते हो?
6: हाँ मेरे आका, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
4: तो तुम मुझे इस देश का राजा बना दो।
6: माफ कीजिएगा आका, अभी इसके लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है।
4: अरे तो मैं क्या आज के लिए बोल रहा हूँ, 15 दिनों बाद बना देना।
6: मगर मैं मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता आका।
4: क्या मतलब, किस मुर्दे को जिंदा करना पड़ेगा यार?
6: आपको मेरे आका, नशे के कारण आपने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है आका। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ आका।
7: नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो या नशीली दवाओं का, ये आपका सर्वनाश करता है। नशे से बचिए, समाज को बचाइए।
3: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर 11:30 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये है एक प्यारा सा नगमा, आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा जो कि पृथ्वी कंधार की आवाज में है।

0: विविध भारती के कार्यक्रम हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:55 होने को हैं। आकाशवाणी रायपुर से जुड़ेंगे प्रादेशिक समाचार के लिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज दुर्ग में छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने आज तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास और आयोग के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा। यह दूसरा मौका है जब सीबीआई की टीम ध्रुव के निवास पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की दो टीमें आज सुबह से जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई सेक्टर 10 स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार सदस्यों से पूछताछ कर दस्तावेजों को खंगाल रही है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 29 आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन परीक्षा नियंत्रक आर्थिक वासनिक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और को शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इंडियन ऑयल के रायपुर मंडल के राज्य स्तरीय समन्वय चौहान ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कि गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ता बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और रिटायर्ड आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। उनके निधन से प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही

0: वृद्धि को दर्शाती है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत। महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के लिए हम जुड़े थे आकाशवाणी रायपुर से। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे आइए जुड़ते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों से।
2: द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है? किट नहीं, किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे।

0: पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत देवदास फिल्म से। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, और आज हम सजा कर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। काला पानी फिल्म का ये गीत हम सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: पुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने ही।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देवबर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देवबर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का संगीत।

हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से। गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव बर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकारे। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब ये पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नजरों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है। जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है। हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नजर से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमयी इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है। और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि

कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की ये खामोश भाषा भाषा और प्यार के नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह कशमकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगाव हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिख कर दे देखूं क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इस राहे मोहब्बत होती है। बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी आपके पति के साथ हुई हो या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा जरूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता अभिनेत्री गायक गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए। तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना बड़ा बड़ा खतरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज किसकी है?

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि ये आवाज मोहम्मद रफी की है। अब ये इजराहे मोहब्बत जो है, आप सब सबको प्यार हो हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफी की भी आवाज भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नजर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं, ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हम बुजुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंद की आवाज अनमोल रत्न रफी साहब की है, बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दे ना, मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं देखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की अंगुलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिसारे क्या करते। जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा, यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख लें, पर वह भी एक समय के बाद, इतने कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है। देखिए, अब अगर वही है तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी है तो कहना बनता नहीं है। जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें, और एक बार हमने लिखा भी और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो

सच में हम भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है। जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी। वाकई में मेरी आंखों के सामने बरबस ही अक्स उभर आते थे, फिर माता रानी का चमत्कार हुआ। पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूंगा। रहना ही चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें लिखी हैं और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल, अपनी इनायत, आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम। आज विश्व साइकिल दिवस है, तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि ये साइकिल, आपकी इनायत, आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम। अगर उस जमाने में ना होती तुम, तो हमारे फूट जाते कर्म, खेतों के इंतजार में रहते, खेतों के खतों के इंतजार में रहते हरदम। जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी, दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम। अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है, और ये खत कितने काम की चीज रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में, जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नजाकत, इनायत और तड़प का जिक्र है। जहां दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है। खतों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास, दो दिलों की विरह, बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है। रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहां दो दिल अक्सर बह जाते हैं। आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफर का आनंद का इंतजार है। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है। जैसे मैंने अपनी पहली खत के बारे में बता दिया, जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये जमाना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विदी जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं, पर दिल में रहे तो ज्यादा अच्छी है। बस

कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे हमारा हमारे नटखट से कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नजर उतारना, और कभी कभी उनको क्या खाना है इस बात का भी एहसास, कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी पेज पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूं कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नजर आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया, खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो ना समझ सके जो दिल के पास था। हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा, ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूं। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणे जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एकमात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इतना प्यार कि प्यार इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है, यह होती है दिल से दिल का मिलन। लेकिन आज वह बात नहीं है, जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था, माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था, और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रहे, ये प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की के दो छोटे भाई लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है। हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहाँ एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर। दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहां उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है। हमारे श्रोता लिखता है, किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है, तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं, और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है, और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है, जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुंचते हैं, यानी कहीं बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है। शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कने ज्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज पर चलती है, मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हर लफ्ज के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाएं, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले, जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए हैं, पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको, जब आपका जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा।
बताइए ये किस फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं।

और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की। प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्जाम था तो देकर अभी निकला ही था तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्निजीस में, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफी साहब की आवाज के साथ में किया। उनको सुनकर मुझे कुछ होने लगता कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी, और जब वो उनको देखती तो खुशी होती थी। पर खत तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को खत एक खत लिखकर उनको दिया था। पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है। घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया, और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, पोस्ट कार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक जमाने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा। प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना। अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारी श्रोता लिखते, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसी भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाऊं उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान, वो भी। लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी, वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहां डाक किया सब चिट्ठियां डालकर जाता है। हमने पढ़ा सब, जितने दोहे और शायरी उसे आते थे उसने लिखा था, नीचे आपकी रानी लिखा था। फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी। फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं, और अगला गीत बस वही है खत के बारे में। लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं, और पहले का जमाना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए। तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत। ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, जरूर से साझा कीजिएगा।

0: ये खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिरी अंतरे में आशा भोसले गा गा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना जरूर जानना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है। प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया। तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाजों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो नहीं, रेडियो सेवा नहीं, बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ, कि उनका उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: बस यही प्यार है आपका और हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की।

सुरीली धड़कन कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर, और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प भ भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या, उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए, और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं। अब इसके साथ मुझे एक चीज और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई। देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए। और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है एक उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं। जी बढ़िया है, कहना चाहिए। और इशारों इशारों में बात थी, अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना। उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है, आपने भी लिखे हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल, इशारों इशारों में रफी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है, मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी और फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था। जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है, और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतजार करते हैं। तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये लिखते हैं खुमार बारा बंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आके दीजिएगा इस गीत के साथ।

और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर्ज जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

0: बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने से हमेशा के लिए उपयोगी रही है। सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक जगह साइकिल का उपयोग किया जा सकता है। ये यहाँ तक कि किया जाता है। विद्यार्थी, डाकिया, मजदूर और कई लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। ये साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा आविष्कार है, जिसमें शारीरिक ऊर्जा लगती है, ना कि कोई और तकनीकी रूप से ऊर्जा।
1: चांदी।

साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डार्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चेन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल। और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिस

0: लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है, और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार पहिए, जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।
1: मैं चली।

साइकिल बहुत अच्छी चीज है, इस वाक्य का प्रयोग कई बार किया गया। इसका कारण है इसके दो उपयोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है, घर के एक छोटे से कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सब से बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, कौन कौन उपयोग करेगा साइकिल का अपने जीवन में? करिए साइकिल का प्रयोग, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पर्यावरण के लिए

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है।

0: ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, अमीर भाई और साथियों की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे, और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि आप

ये गम ही सही, ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर आए।

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का ये गीत, गीतादित्य की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से गीता दत्त की आवाज है, गुलजार के बोल हैं, करुण रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो सजावट देख कर लगा की कल के उत्सव की जो रौनक
1: महक है वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
1: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता। और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है? जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती हैं और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
2: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
2: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस।
1: अरे
2: तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायने रखती थी उस जमाने में, है ना।
2: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं
2: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
2: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मी

0: में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
1: हाँ
0: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है, अरवी
1: लौकी
0: है,
1: है।
0: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना,
1: हाँ।
0: तो महिलाओं के सामने
1: और
0: बड़ी
1: बहुत सारी
0: समस्या है कि
1: सब्जियां,
0: बनाएं क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत
0: जी
1: सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह
0: ठीक।
1: फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूं।
0: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन, और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी,
1: अरे सारा मत बताओ।
0: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी
1: हाँ।
0: रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों के
1: बिल्कुल
0: साथ।
1: सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है,
0: बिल्कुल सही
1: और ये
0: कहा,
1: उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात
1: बिल्कुल
0: को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में ही लगे रहते
0: हाँ
1: हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं
0: बिल्कुल
1: मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी

0: हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं। वो बहुत जरूरी है क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
0: जी
1: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल, और
0: हाँ
1: इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
0: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
1: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है ऐसा हम मानते हैं,
0: हाँ
1: ठीक है। और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता, भाई माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये हमारे
0: जी
1: रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेम पूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
0: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी
1: सहायक
0: बहुत
1: होते
0: मदद होता
1: हैं,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते
0: जी
1: हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो वह कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये
0: बिल्कुल
1: हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल। हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
1: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यावसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
0: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो हैं जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
0: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्ते में ही तो कई बार हम प्यार से सोना वगैरह भी कहते हैं।
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं, ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल, की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता।
1: जी
0: रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो
1: जी
0: ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर
0: कर लिया
1: लिया
0: जाए,
1: जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती, या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती।

0: होती हैं। इसी तरह से हमारे यशोदा ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम आपनी जो आपकी धर्म पत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं
0: जी
1: कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहाँ एक ओर अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो सबसे अच्छा तरीका यही है आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
1: बच्चों को दें,
0: जी
1: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना।
0: जी
1: ये तो है ही कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि
0: जी
1: उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो
0: हाँ
1: उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए
0: जी
1: हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
0: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खास तौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक
0: पहनावा।
1: पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घरचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक,
0: पोशाक।
1: और
0: हाँ
1: दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: प्रवेश
1: करती।
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम
0: बिल्कुल
1: जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी
0: बात कर
1: जोशी।
0: रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। गठचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी हैं ना, वो भी गठचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
1: साइड
0: हैं।
1: में रख लेते हैं वो भी।
0: जी, और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है, और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि गठचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें गठचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: गठचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो
0: जी
1: गठचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है,
0: जी
1: जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है गठचोला साड़ी डालती है,
0: जी
1: तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और गठचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत
1: बहुत महत्व
0: महत्व है।
1: होता है। बिल्कुल, और गठचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं।
0: जी
1: देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की, कुछ हम कहेंगे कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे
1: कहेंगे
0: हैं।
1: बिल्कुल ही, इतना प्यारा विषय है साइकिल हमारा, इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें
0: जी।
1: पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं, और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी, और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और
1: बिल्कुल
0: इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था, और ये कहानी हास्य से भरपूर है। इसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है
1: तो
0: तो
1: उसे
0: जरूर
1: पढ़नी चाहिए,
0: पढ़िए।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखती है कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे कन्या श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे,
1: बिल्कुल
0: सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे।
1: बिल्कुल
0: आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल
1: निकाल
0: निकाल
1: दिए।
0: दिए।

0: अच्छी बात है। और वही आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। और आज दो दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
1: और मैं ये गाना नहीं सुना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे। गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
0: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है भाई, वो तो बेस है आपका, है ना। वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
1: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है, और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन लें।
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
1: तो पढ़िए ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान
1: जी
0: रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल

0: करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है
0: हाँ
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इस चीज में
1: और
0: साइकिल दे दी जाती थी, लेकिन
1: दुपहिया
0: आज
1: वाहन या
0: उल्टा है।
1: मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था
0: हाँ
1: तब।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता
1: जी
0: पिता भी, और उन्हें यहाँ तक कि चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या
0: या
1: फिर
0: रणनीति,
1: रणनीति।
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें
1: जी
0: भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें ये तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना, ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है।
0: जी
1: और चंचल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
0: और वो
1: हमारे
0: इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए
0: हाँ,
1: किसी भी तरह से।
0: ताकि उनका
1: लेकिन
0: पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई भी है।
0: जी
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसें पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते
0: क्या बात है।
1: हैं।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम
1: जी
0: यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि
1: जी
0: वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी तो
0: तो कार्यक्रम
1: चलिए,
0: समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: संस्थान की विभागाध्यक्ष यानी कि अली यावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं हैं, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट, लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाँख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल स्माइल है और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन

0: जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है. अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं. और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियां
0: और विविध भारती और अलियावर जंग.
1: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं
0: क्या?

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, एंड गैलडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
0: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके, एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में

0: काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोर बेल, तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है, तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है? अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके? उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं,
0: जी
1: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: उनके
0: आपकी
1: लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा

0: लाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू ऐड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है। ओके तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी
1: आसानी होती
0: आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और
1: बिल्कुल
0: कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर
1: बहुत कॉमन
0: इम्प्लांट
1: हो
0: बहुत
1: गया।
0: कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न, जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य

0: बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो. फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं. इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो.
1: बिल्कुल.
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स ओके. आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच ओके. तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स ओके. तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहाँ से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ओके एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा ओके. पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर

0: टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं, वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी सारी अलग अलग चीजें खोलते हैं, ओके। क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है, ओके, बुक इस तरीके से खुलती है, ओके। अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है, तो दैट क्रिया इज डिफरेंट, ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं, कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है। और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं, तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा आप अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो
1: अभ्यास
0: हाँ,
1: होगा।
0: जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो
1: बिल्कुल।
0: विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड, ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो
1: बिल्कुल
0: दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी। तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं। अमूमन होता होगा तुम्हें
0: राइट
1: कि
0: राइट राइट राइट
1: पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ, थिंकिंग प्रोसेस है, क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: सी, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है,
1: हाँ।
0: राइट, एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए, जो है भाषा, ओके। कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके, एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग। एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज, ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मैं
1: बिल्कुल।
0: ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इंपेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं, नहीं, दे आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच, बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है, तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं, या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं, या क्या कैसे करूंगी, वो मुझे कैसे पता। जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे, या मुझे उस चीज का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
1: बिल्कुल। यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना, यहाँ ये जी सुनते हैं ये गाना। ऐ दिल

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद

0: देखो, बात किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और उसको BEd का कोर्स करना है या MEd का कोर्स करना है या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम, बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है। ये कहाँ जाना है, ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज नो इंटरप्रेटर। ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है। थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं, तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइनअप हम करें, तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे। कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं
0: मैं इस
1: कि
0: क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय
1: आप तो हेड
0: पर्सनल
1: हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक NGO सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है। ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स, आई थॉट कि लेट मी गेट इन टू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं। एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें, तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स। कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और PhD करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है, बट दीज आर ऑल लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से

0: देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू, ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर।
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी। अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे माइंड सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक। हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल, ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट। फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है। फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक, ओके। देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके। और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एडुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल। सो एडुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक, एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच, तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो, ओके, वो हम देते हैं।
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHTNIC वेबसाइट है, आप वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे। यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी, जिनके घर में जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहाँ इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विथ मी।
1: तुमको देखा तो ये ख्याल
0: हाँ,
1: है,
0: ऑल गुड,
1: तो सुनते हैं ये।
0: ठीक है।

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत।
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलियावर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाँ पूरा है तो प्ले तो अब
1: प्ले हो रहा है, अब वो एक एयर पे जा रहा है कि भी जा रहा है समझ नहीं है।
0: मैं तो फिर रायपुर में आ पाएगा।
1: हाँ मेरे को तो यहाँ पे सब निकालना पड़ेगा आपका।
2: मोरा देवे पे शुरू कर दें अपन।
1: अरे तो ठीक है ना, पहले वो मेरे को सिग्नेचर ट्यून वगैरह सब निकालनी पड़ेगी घर पे कंप्यूटर।

geht ja nur weiter. सुई हिल नहीं रही।

0: बर्डाण चोरकी पानी कंडराजा पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये महुआडी कोनपा पारा फुटसेरा टिकली पारा खड़ा माचा हरदी झरिया राजा आम महेशपुर झिमकी चट्टान पारा कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 123 है। तामर सिंघा सोहनपुर बोजिया पुरुंगा बनहर औरानारा बेहरामार गलीमार लोटान पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी सलिहा भाटा बांधापारा लालडी झुनकीडी जुनवानी कुकरी कादर फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर बंगूरसिया जुनवानी चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदा पकरीद नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार लूठा पारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

संगी संगवारी दीदी महतारी मल्ला अंजुरी भाई के जय जोहार राम राम। संगी हो जागो गा मोर भैया दिन जागे के आगे, जागो गा मोर भैया दिन जागे के आगे। छत्तीसगढ़ के माटी है चंदन कसम हागे, छत्तीसगढ़ के माटी है चंदन कसम हागे। लागत है पाए हमन अब हम सुराज ला, हक मांगे न पाए छत्तीसगढ़ राज ला। विकास के सूरज है अब देख पंग पंग आगे, जागोगा मोर भैया दिन जागे के आगे, जागोगा मोर भैया दिन जागे के आगे। संगवारी हो खेत में जेकर संजा होते होते जी हाँ बिहान गा, ओला कथे किसान का भैया ओला कथे किसान का। सूरज देव के हुए के पहली जेन खेत में जाते, नई खोजे बने खाए पीने पर बोरी बात सिखाते, बोरे बात सिखाते हैं। खान महा नांगर हाथ तुतारी, खान में नांगर हाथ तुतारी, बोहे मुड़ में बिझा धान गा, ओला कथे किसान का भैया ओला कथे किसान का। संगवारी हो हम देखे हैं के जिंदगी में बहुत जन हमारे संगवारी ऐसे आवे जिन मन जैसने बीजा बोही वैसने वह फसल पाही है ना। और वैसने भी कहे जाते के बीजा ओह वो वैसने बोही जन फजल फसल उसने दी। तो सबले पहली बात आते हमन के गोठियाबो दिनहानी फसल पर बीजा के चुनाव करे पर हमन ला कुन कुन बात के ऊपर चित करना चाहिए। किसान भाई मन के खेती में सबले पहली पूंजी बीजा आ रही होते, खेत के तैयारी खातू माटी यू दवाई पानी हर सबो बाद में आते। फिर अगर बीजा हर बढ़िया नहीं हो तब मेहनत के लाभ उतका नहीं मिल पाए जितका वो सोचता था। एकल ले तिनहानी फसल जैसे सरसों हैं, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, राम तिल की खेती में सही बीजा के चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी हो गए। सबले पहली फसल हमार बात यह हावे किसान भाई मन ला हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीजा का उपयोग करना चाहिए। प्रमाणित बीजा में अंकुरण क्षमता बने होते, बीमारी गलो कम होते और बीज हर घलो बढ़िया एकर होते। बाजार ले बीजा खरीदथन त खरीदगत घाने होकर टेग और गुणवत्ता के जानकारी हमन ला जरूर रखना चाहिए। दूसर बात अपन इलाका और मौसम के हिसाब ले किस्म के चुनाव करना चाहिए। काबर के हर किस्म के जमो जगह बर उपयुक्त बोना हर उचित नहीं हुआ। जौन किस्म हर स्थानीय फसल जलवायु और माटी पर बने रहे थे लाभदायक रहे थे वही ला हम अल्लाह चुनना चाहिए है ना। काबर के फसल के बढ़वार और उपज दोनों हर बढ़िया होते हैं। माँ संगवारी और बीजा के शुद्धता गलो बहुत जरूरी हवा। फिर नई बगत कई बगत हमन देखथन कि बीजा के शुद्धता गलो बहुत जरूरी आए। अगर हमन देखें कि अपन मन के तीर तकार के जो दुकान है वहाँ लाइन अब बिसाके डाल दें है ना, तो वो और अच्छा बात नहीं हुआ है। खरपतवार के बीज बीमारी चाहे दूसर फसल के मिंजरा मिलावट मत हो सके। बुआई करे के पहली बीज उपचार करना गलो और बहुत जरूरी है। काबर के बीज उपचार ले कुछ फसल बीमारी और दूसर किस्म के कीड़ा के जो असर है वो कम होते। हमन तिलहनी फसल मन पर तेल के मात्रा और गुणवत्ता नाव रखे पर किस्म के चुनाव हमें करना चाहिए। एक कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के माध्यम ले उन्नत किस्म के जन माध्यम कृषि विभाग के ओकर माध्यम ले उन्नत किस्म के प्रयोजन बताते हैं वही बात ला हमन ला बोना चाहिए। संगी और खेती में सफलता और सलाह के आधारित
जौन जिहाँ जैसन फसल

फसल के चुनाव हमें करना चाहिए, वही किसान रे हमन चुनाव करें तो कर हमें ज्यादा फायदा हवा है ना। तो ये जो बात ला हमन चेक जरूर करना चाहिए। अब लाओ आज है हमन ये बात की बो के रूख राई रहे जी हाँ बर्फी पर के छाव जी, चला हम बना बो संगी सपना के गाँव जी, सपना के गाँव जी।

0: ये सुघर गीत सुना रहे से भीम यादव अनिल मचान संगवारी हो खेत मजे कर संजा होते होते जी हाँ बिहान ओला कथे किसान ग भैया कही थे ओला किसान सूरज देव के उए के पहली जेन है खेत मजा थे नहीं खो जाए बने खाए पिए बर बोरे बासी खाते ओला कथे किसान ग भैया ओला कथे किसान। आज सफल कृषक से भेंट के क्रम में हमन श्री भंवर सिंह कंवर चैत कुंवर जन्म रथे गांव केरा झरिया विकासखंड कोटा जिला कोरबा है और एमन संग हमार पंचू भैया गोट बात करे हैं। तो चलाओ चेत लगा के मन लगा के बैठ जाथन और कले चुन सुनत हमन इमन के गोट बात ला।
1: संगवारी हो राम राम जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। आए दिन आप मला हमारे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर गति ले सफल कृषक क्रम में हमार किसान भाई मन के अनुभव बताथन कि कैसे अभी बेरा में आनी बानी के खेती किसानी करके दोहरा आमदनी कमाते हैं। अभी खरीफ फसल के तैयारी में हमारे किसान भाई मन लग चुके हवा कि कौन प्रकार से हम खरीफ फसल में अपन जो खेती किसानी के तैयारी करी और अवैया बेरा में दोहरा आमदनी कमाई। आज हम आए हैं कोरबा जिला ब्लॉक कोरबा और ग्राम है केरी झरिया और यह हमारे बीच में अवर्जन किसान हवा है जेमन अभी से खरीफ फसल के तैयारी में लग चुके हैं। तो आवा इंकर करा गोड़ बात करा था मस्त पहाड़ के बीच में बसे छोटे से गांव जी हाँ यह किसान भाई मन केवल प्राकृतिक खेती ला ही ज़्यादा महत्व देते और ज़्यादा से ज़्यादा भूया के उपजाऊ क्षमता बढ़ाते संगे संग जो भूया की नमी है वोला बढ़ा के रखे हवा है। तो आवा संगवारी हो बात करा था आज प्राकृतिक खेती के अंतर्गत। राम राम।
2: राम राम।
1: का नाम है आपके?
2: मेरा नाम भंवर सिंह कंवर है।
1: कहाँ रहता?
2: मैं ग्राम केरी झरिया ग्राम पंचायत गढ़ुपरोड़ा जिला कोरबा छत्तीसगढ़।
1: जिसे बात करी आपके क्षेत्र में भी हम आए हैं गोड़ बात करें आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर गति में। बहुत अच्छा लगा था कि प्रकृति के बीच में आपके गाँव हाँ बसे हवे कहीं न कहीं आपकी जो गोड बात ला आज हमारे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर गति ले जो हमारे किसान भाई मन सुनी कहीं न कहीं आपकी जो बताए सार्थक जानकारी ला।

0: ओमन अपन जोन खेती किसानी के जोन बूता काम हे ओमा उतारही। आपके क्षेत्र ला एक अलग चिन्हारी कहे जाते, खास करके प्राकृतिक खेती में। तो प्राकृतिक खेती होते का एला बताता।
1: हाँ, हमारे जंगल में ना पूरा जंगल से तो अगर पूरा खाद हर आते और खाद उतनी डालन प्राकृतिक खेत से बढ़िया फसल होते, चावल भी बढ़िया होते, लेकिन वर्षा के अभाव में कभी कभी कम पड़ जाते।
0: लेकिन हम बात करी कहीं ना कहीं आप जो क्षेत्र हवा ये थीर में जन प्राकृतिक खेती ला एक नवा मुहिम और जुन्ना बिरल खेती करत आत हवा है, काबर की हमन एक बार इसलिए कि हम फसल के लालच मानी बने के जन खातू माटी ही कीटनाशक और छिड़काव कर जात रहे, ओकर से नुकसान हुआ कि हमारे जो भूया की उपजाऊ क्षमता दिनों दिन घटत जात रही हवा। तो कौन प्रकार के आपके गाँव के लोगन मन, आपके गाँव के किसान मन जन प्राकृतिक खेती ला आज भी संजोड़ के रखे हवा इला बताता आप।
1: हाँ, पूरा खातू मराई में पूरा केचुआ उचुआ मर जात रहे, तब ओकर मना कर रहे हैं पूरा हमारे गांव में कि प्राकृतिक खेती गोबर उबर खाद डाला सरकारी खाद मत डाले से कि बोले हैं डंगी मल्ला, वो आज भी वैसे करा था पूरा प्राकृतिक गोबर खाद डाल था।
0: कहीं कहीं भूया के उपजाऊ क्षमता और नमी बने की दवा।
1: हाँ, एक से उपजाऊ क्षमता बने है।
0: अब हमार खरीफ फसल के खेती के तैयारी में आप मन हम किसान भाई मल्ला चुके हुए, तो अभी के बेरा में का खेती की तैयारी हवा कौन प्रकार से करा था एला बताता।
1: अभी के तैयारी में जंगल के पूरा ये झाड़ी फाड़ी मतलब साफ करा था, खेत मन के ढेला पसाई है सब चला थे, पानी गिरने के बाद अभी बोई चालू हो जाही खुर्रा बोघर आऊ लईहर बाद में बता, लेकिन ज्यादातर हमारे थी लईहर बो था, अगर की पहाड़ी एरिया था जमीन बालू आ जाते पहाड़ से थरा उरा लगा था ना लई ज्यादा बोतना, खेत भी कम है हमारे थे पूरा विस्थापित है बांध से।
0: जैसे बात करें अगर हम खेती किसानी करा था ना, खेती किसानी में जब तक हमारे करा गौ धन नहीं रही तब तक हमारी खेती किसानी है अधूरा माने जाते हैं, तो आप करा कते कन गाय गरु रखे हवा एला बताता आप।
1: बैले छे दो नागर खातो होते थे बाहर ले जुगाड़ करते हैं।
0: जानकार मन की मन ही कहते कि अगर हमन दूठ गाय गरु रखे हवन तो हमन एक एकड़ खेती पर उसका जो गोबर हुआ थे उसका पर्याप्त होते, तो का आप जैविक खेती के जो गोबर खाद हवा को उपयोग करते हैं।
1: हाँ करते हैं, आपको केचुआ भी बनाते हैं, अभी बंद हो गई इसे केचुआ खाद भी डालते रहे मर गई।
0: सफल किसान उहिल कह जाते जो है एक ठक भूया मानी बनी के खेती किसानी करते के। आपके हाँ हन अच्छा लगा था पहाड़ के बीच में आपके गांव बसे हवे और बारी देखा था तब बने कन बारी मानी मानी के भाजी पाला लगाया है, चेंज भाजी घलो दिखा था और जोंधरी घलो दिखा था, तो चेंज भाजी और जोंधरी कब के लगा रहे बतावा ना।
1: चेंज भाजी होली के बाद लगे रही से जोंधरी पहले के रही थोड़ा।
0: और एक जिससे हम बाजार हाट की बात करी तो कहाँ बेचे जाता एला बताता।
1: नहीं बाजार जाए भी पर यह बेचे जाते गांव के नहीं लग रहे थे पूरा आ जाते हैं ले जाते
0: घरे में आ जाते
1: हैं।
0: हाँ, सरकार के तिलापट की योजना संचालित हवा है कि कहीं न कहीं हमारे किसान भाई मन योजना के माध्यम से दोहरा आमदनी कमा सकेगी।
1: हाँ, किसान सम्मान निधि तो मिला थे,
0: किसान सम्मान निधि एक राशि भले से छोटे हवा है लेकिन कहीं न कहीं देखिए तो इसी बेर में हमारे प्राप्त होते हैं जे बेर हमारा अबर ज्यादा पैसा की आवश्यकता होते, तो जौन बेर आपका किसान सम्मान निधि राशि प्राप्त होते किसे लगते हो बेरा।
1: बढ़िया है किसान निधि है, सबका टाइम मिल जाते पैसा तो धान निदाई कोड़ाई घनी।
0: हमारे रेडियो सुनिए किसान भाई मन का संदेश देना चाहता हूँ।
1: मैं मन ले कहा था कि अपन खेत ला बढ़िया प्राकृतिक रूप से गोबर खाद जैविक खाद डाल के बढ़िया खेती करें और डबल फायदा लेवे।
0: इतना बड़ी जानकारी बताए कर पर अपन बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार
0: संगवारी, हुआ बात करी हमारे खेती किसानी के अंतर्गत, तो आज कहीं के हमारे किसान भाई मन के संगे संग हमारे जो गाँव के दीदी बहनी मन घलो अपन जो खेती किसानी के रद्दा में अपन भूमिका ला आगे बढ़ाता है और अच्छा हवा है कि आज कहीं ना कहीं हमारे जो दीदी बहनी है वो मन हमार से चार कदम आगू बढ़ा था है। आज हमन कोरबा जिला आए हैं और यहाँ के वनांचल क्षेत्र में देखबो तो कहीं ना कहीं हमारे जो दीदी बहनी है तेमन आनी बनी के खेती किसानी करके दोहरा आमदनी कमाते अब इनका कर गोड़ बात करा था। दीदी राम राम।
2: राम राम।
0: का नाम है आपके?
2: चैत कुमार कंवर।
0: कहाँ रहता हूँ?
2: केरी झेरिया।
0: केरी झेरिया की बात करी तो यहाँ के जो खास करके महिला हमारे दीदी बहनी के तो कहीं कहीं खेती किसानी में अबड़े ज्यादा अपन भूमिका ला निभाते। अच्छा भी हवा है कि काबर खेती किसानी के संगे संग घर परिवार चलाना आज कहीं कहीं हमार एक सशक्त नारी के पहचान घलो है। तो अभी बेरा का खेती किसानी बूता कम चला थे बताता।
2: पानी गिरे के समय आते जोंदरी रमकलिया और भाजी पाला कुछ कुछ लगाए बर तैयारी करा था, गोबर मतलब बारी में डाला था खाद वात ला खेत बारी में डाला था, ओकर बाद पानी गिरी जोंदरी ला बोबो ओकर संग में वही भाजी पाला रही कागत है रमकलिया और चेंज भाजी और झुनका कहीं सब चीज ला जगाबो हाँ तो खातू डाले रहन ना तो हमन खातू नहीं डालन कुछ उरिया उरिया नहीं डालन हमन बस गोबरे खाद डाल था।
0: पहाड़ ले आए रहते

0: पहाड़ ले आए रहते ना, पानी नहीं मतलब पान वान सर थे जंगल के, तो कर बढ़िया खाद वाद आते आते हरा के बैठ थे खेत मन में, तो हम ओकरे चलते हम और कुछ खाद नहीं डालन। हाँ हमारे ती के मन का थे ना वो ती के का थे ओरिया डालल खाना पीना चावल ला मतलब बाँची थे भात है पचे टाइप के हो थे कथे। हाँ ओकर ले हम नहीं डालन, हमार चावल है एती के थोड़ा अच्छा लाग थे इसे बोलते सब।
1: जैसे अभी एक बार बात करें तो हमारे कथे किसान भाई मन बाड़ी बखरी के खेती की तैयारी करना चाहता हुए किसान भाई मन, अगर आप लोग सुनत हवे खास करके हमारे दीदी बहनी मन बाड़ी के तैयारी करना चाहते तो कौन ढंग से खेती की तैयारी करे ला बताता, भुइया की तैयारी कैसे करे।
0: खेत ला भुरभुरा जोतवे डारे हवन बैला नागर में, तब भुरभुर ले जोता है तेकर बाद खाद डालबो, तेकर बाद दे सूखा बहुक बो अब धान ला भाजी पाला बो अब बारी मा। हाँ तो भाजी पाला बो अब तो हम बढ़िया हो ही भुरभुरा टाइप माटी रहते था
1: ढूरू परिया बना था
0: ढूरू बने ले था ना बढ़िया, बस मादा वादा कर करके तो मादा में जगा था ता पानी वानी ज्यादा आते ना तब मार थे ता नहीं मारे के दवा और पानी मार जाते ना ता मर जाते आजकल के थोड़ा बरसात के है नहीं वो कर ले हमन ढूरू मादा बने के लगा था रम के लिया और कुछ कुछ झुनका मखना उखना जगा था ता उसने ढूरू इसे बांध के बारी में लगा था।
1: अच्छा अलग अलग के प्रकार खेती कर
0: अलग अलग प्रकार के खेती कर था
1: सीढ़ी नुमा के दो हाँ। ताकि पानी है
0: वो माले गिरा थे बैठ जाए, मतलब वो पेड़ में पानी है जमा झीन होए और डूहरू बंधे रहते उकर अगल बगल में मार जाए पानी और मतलब पेड़ में झन होए, इसने करके तो बना था डूहरू ला और जगा था।
1: जैसे सब्जी भाजी लगा था तो सरसों की बात करते खास करके आपके क्षेत्र में कार के पूरा पहाड़ के बीच में आपके गांव बसे हवे, साग भाजी लगावा था तो उकर बेचे की व्यवस्था कर रहे, कहाँ बेचे जाता है बता।
0: आज बुधवार है बाजार रहते अजगर बाहर है और तो वही अजगर बाहर में ले जाथन और फिर गढ़ में कल रही बृहस्पत के गढ़ो जा चल देथन वह बाजार है गढ़ चल देथन बाँचे खोचे रहते तेला दो दिन अब तहाँ ले गाँव में बेच थन बाँच के आते तेला ना मतलब गाँव में ले लेते नी लगाए रहे ते मन।
1: अच्छा बर बिहाव होते
0: तो बर बिहाव होते ते मन ले लेते और खाए बर और अगल बगल के सतरेगा और ये तिरापा है आते लेहे बा ता दे दे थन।
1: सफल महिला किसान उहिल कह जाते जोन हा एक ही बेरा मानी बनी के बूता काम करते हैं। आपके हाँ है बारी में बैठे हैं अच्छा लगा था वे बारी में देखा था तो कई प्रकार की बोकरी घलो रखे है और कुकरी चिंगरी घलो रखे हवा, मन में किसी विचार है कि हम बोकरी भेड़ वा राखी के एला बताता आप।
0: तब जंगल गाँव है हमारे ला कोई थी मजदूरी नहीं मिले कही क्या बकरी ला राखे हवन ता ओला साल भर मना दू घा पीला देते ता वहा उमले हमारे ला कर कीमत बकरा मन के पा जाथन 10,000 छः महीना हो इस ना तो 10,000 के हो जाते।
1: अच्छा
0: अच्छा ता वही ला बेच थन बकरा पठिया ला ता ओकरे चलते हमन राखे हवन बकरी ला।
1: अच्छा अच्छा अच्छा से बकरी के माध्यम से आमदनी हो जाती है।
0: हाँ बकरी के माध्यम से हमन ला आमदनी हो जाते वो बकरा लो घालो बेथन फिर खाद घालो मिल जाते हैं हमला।
1: बकरी ला गरीब किसान मन के गाय कह जाते हैं और खेती किसानी आप एक सफल महिला किसान तो कहीं ना कहीं आप देखो तो अगर हम खेती किसानी करत हन तो जब तक हमारे घर गौ धन नहीं रही तब तक हमारे खेती किसानी बूता काम अधूरा रहते। गाय गरुआ कते कन रखे हवा एला रेडियो सुने थे हमर किसान भाई मन एला बताता आप।
0: हाँ गाय गरुआ हवे हमर करा तो बैला हवे एक नागर और गाय मन 5-6 ठन हवे और पीला उला करके वो 15-20 हवे दूध घलाउ हमन ला मिल जाते खाद मिलते खेत मन मा खाद ला डाल थन हमन एकर ले रखे हवन हमन बैला ला कि हमार ती एती तो ट्रैक्टर वैक्टर आए नहीं पहाड़ के तीर ता बैलेच मा खेती किसानी करथन हमन नांगर वांगर बैला मा करथे खेती ता ओकरे रखे हवन तो उसने मा हमन ला या के फायदा हर मिलथे के रखे हवन।
1: तो घर के खेती अलग करथु बिसान अंगर अलग जात होई कि दो।
0: हां घर के खेती अलग करथन आउ मतलब कोई कोई मन खेती करे बा बोलथे दे मांगथे नांगर वांगर ता दे देथन
1: उहुं पैसा लेत होई नहीं।
0: हां उहुं पैसा मिल जाते हमन ला बियासी करे बर नांगर खोदथे। हां ता बियासी बर तो ट्रैक्टर हनी बने। हां ता नांगर म बियासी करे जाथे ता बाल लेथे नांगर बैला नांगर ला ता बैला नांगर के खेती करो आथन।
1: आप बताए कि आपके यहां गाय घलो रखे हवा तो कते कन गाय रखे हवा और जोन गोरस प्राप्त होथे ओला बताता कहां बेचे जाता।
0: गांव पे बेचे जाथे दूध है तो हमार दही घलो बने लेथन ता अभी गर्मी गर्मी सीजन 5 ठन लागत है अभी हमारे गाय है तो दूध हो जाते वही 2 किलो 2.5 किलो सही।

0: दुकान वाला मन घलाऊ ले लेथे तो ओमा पैसा पा जाथन, कोई कोई मन अउ लेथे तो ओमा हो जाथे पैसा, ओकरे रिश्तेदार या करथन हमन खातू माटी अलग हो जाथे, दूध हो घलाऊ मिल जाथे हमन ला खातू माटी अउ उच मसे पीला कोला होथे त नांगर बैला बा हो जाथे।
1: अच्छा, दोहरा आमदनी की?
0: हां, ओहु आमदनी हमन फिर नांगर बिसाए बनि पारे हमन ला।
1: एक बेर ऐसे रहिस कि आप गांव में कहीं कहीं रोजगार के समस्या होत रहिस हवे, आज कहीं कहीं खेती किसानी के माध्यम से, बाड़ी बकरी के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से गांव में ही रोजगार स्थापित हो चुके हैं। आप ला मुला आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर ले सुनत हवा, आप अपन गांव में जंगल के बीच में बसे हवा, बहुत अच्छा लगा था कि पहाड़ के बीच में प्रकृति के गोद में अपन के गाँव बसे हवा, एक प्रकृति के बीच में प्राकृतिक खेती करके आज कहीं कहीं लोगन मन ला प्रेरणा देता हवा कि कैसे हमन प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपन भूया के उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकत हन, भूया के नमी बढ़ा सकत हन, एकर बारे में पहले की बेरा अब की बेरा में का परिवर्तन इस हवा ग्राम पंचायत बहरा मा एला बताता आप?
0: पहले बाहर जाए कमाए खाए ला इति बा कछु या नहीं रही से ता गाँव में मतलब रोजगार वोजगार खुल जाते ता उमा चल देथन, सतरेंगा बुढ़ा रहता डोंगा वोंगा चलाते ता उमा घलाऊ मिल जाते पैसा हमला, डोंगा चलाते ता जाते रोज डोंगा चलाए बार, और मछली उछली घलाऊ जाल वाल खेल रहते ता उमा एको पैसा बन जाते एको किलो पा जाते ता।
1: घर पर चलत की?
0: हाँ, मैं घर परिवार चलत हवे।
1: अभी आप ला मोला आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर ले सुनत हवे, ओहो दीदी बहनी मन आपे मन का पशुपालन और बाड़ी बकरी करना चाहत हवे तो दीदी मन ला का संदेशा देना चाहत है इला बताता?
0: मैं सबो दीदी मन ला बोला था कि 2 डिसमिल 4 डिसमिल जिसे जमीन हवे अपन अपन भाजी पाला बढ़िया लगावा, गोबर खाद डाला ताकि हमारा खरीदी ये झिन जाए, बिसाए ला झिन पारे पैसा, बल्कि 1-2 किलो बेच के खाई, इसने सबो दीदी मन लगावा, मोर कहना वही है, गाय गोरुआ घलाऊ पोसा, दूध घलाऊ मिल जाही, फिर खाद घलाऊ मिल जाही, नागर बैला बर मिल जाही, तई कहना है मोर सब।
1: इतका बड़ी जानकारी बताया कर बस आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम जय जोहार।
0: राम राम जय जोहार।
2: आज के हमारे कार्यक्रम कैसे लगे इस तरह अच्छी चिट्ठी पत्री में लिख के बताहा, अभी कतका सुंदर ढंग ले अच्छा ढंग ले हमार केरा झरिया विकास खंड और जिला कोरबा के हमार वन सिंह कंवर जी और रूप कुमार मन चैत कुमार मन बताइन हवाए कि खेती किसानी ला पहली हमन बाहर कमाए खाए जान, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, घर बैठे तो काम धाम मिल जाते और सबके अच्छा ढंग ले काम धाम हो जाते। तो हमार कार्यक्रम आज के कैसे लगे चिट्ठी पत्री में जरूर लिख के बताहा, कावर के आपके भेजे चिट्ठी पत्री हर ही हमर अब हमला एक नवा रद्दा दिखाते, फिलहाल जात मिलात जम्मो संगे संगवारी दीदी बहिनी महतारी मल्ला अंजलि भाई के जय जोहार, राम राम।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा जगत।

आज जब मैं रेडियो आने की तैयारी कर रही थी तो दोपहर कुछ अलग सी लगी। सड़क खाली पड़ी थी, धूप बिल्कुल चुपचाप से बिछी हुई और आसपास गर्मी की वो सुस्त सी खामोशी। पता नहीं क्यों उस एक पल ने सीधे गर्मी की छुट्टियों तक पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महक। याद है वो दोपहर जब घर में जब हम आराम कर रहे होते थे और हम धीरे से साइकिल निकाल कर गलियों की तरफ निकल पड़ते थे। ना मोबाइल की जल्दी, ना वक्त का हिसाब, बस पैडल चलाते जाओ और लगता था पूरी दुनिया थोड़ी और अपनी सी है। कभी दोस्तों के साथ रेस, कभी बिना वजह का वो लंबा सफ़र, और कभी कभी बस साइकिल की घंटी बजाते हुए यूं ही हवा से बातें।

0: तो आज के शाम में हम बात करेंगे बचपन की उसी साथी की जो आज भी हम सभी की यादों में कहीं ना कहीं खड़ी है, मेरी बाइसिकल। शायद आपको भी अपनी पहली साइकिल याद आ जाए, उसका रंग, उसकी घंटी, या फिर वो दिन जब आपने पहली बार बिना सपोर्ट के साइकिल चलाई थी। और हाँ, कार्यक्रम के बीच में हम सुनाएंगे आपकी पसंद के गीत, तो आप भी हमसे जुड़े रहिए। हो सकता है आप भी बचपन की उन्हीं गलियों में पहुंच जाएं जहां बेफिक्री और साइकिल दोनों को पंख लगे होते थे। दोस्तों, हर किसी के बचपन में एक साइकिल ज़रूर होती है, चाहे अपनी हो, दोस्त की हो या किराए पर ली हो। याद है जब पहली बार साइकिल सीखी थी, किसी ने सीट पकड़ रखी होती थी और किसी ने हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ धक्का दिया होता था। हम चलाते थे पेडल और फिर बस चल पड़ती थी साइकिल। ये वो पल होता था जब हम बैलेंस बनाना सीख लेते थे और ज़िंदगी का इसी से हमें पहला सबक मिला, बैलेंस का। ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत पड़ती है ना बैलेंस की। ज़रा याद कीजिए आपकी पहली साइकिल का रंग क्या था, कौन सी वो गलियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। इन्हीं यादों के साथ आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: गीत हमने लिया था फिल्म निकाह से, आवाजें थी महेंद्र कपूर की, धुन तैयार की थी हसन कमाल ने और इसे लिखा था रवि ने। इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे साथियों के नाम हैं, बालोद से हैं देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, राधिका, प्रभा, अल कबीर और किकीर मेटा बिलहारी। पाटन दुर्ग से हैं संतोष और रुक्मणी शर्मा। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू। धरदेई सरगांव से हैं चंदूलाल पटवा, हर्ष, सुनीता, विनीत और कृष्टि पटवा। बागामुड़ा कोमा खान से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। सावतपुर से हमारे साथी हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन। ग्राम उच्चभट्टी से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी, शिवन्या और अनु गोस्वामी। दोस्तों, खूबसूरत गीत और आपकी पसंद का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन बातों का सफ़र अभी बाकी है। और जब बात मेरी बाइसिकल की हो तो गर्मी की छुट्टियों का जिक्र कैसे पीछे रह सकता है। दोपहर की वो सुस्त हवा, आम के पेड़ गलियों में घूमना और घर वालों की आवाज़। लेकिन बचपन में कौन सुनता था, हम तो निकल पड़ते थे अपनी सवारी पर। कभी किराने की दुकान, कभी दोस्त के घर और कभी साइकिल की चेन उतर जाए तो सारे दोस्त मैकेनिक बन जाते थे। वो पंचर भी किसी एडवेंचर से कम नहीं होता था। और आज हाल कुछ जुदा है। बच्चों के पास पहले से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मोबाइल गेम्स हो, वीडियो गेम्स हो, OTT प्लेटफॉर्म हो। ऐसे में साथियों, हमें ये बात सहजता से समझनी होगी कि हम अपना बचपन और आज के बचपन की तुलना जजमेंटल होकर ना करें। हम आज के बचपन को कमतरी के चश्मे से ना देखें। हो सकता है हमारे पास भी अगर ऐसी सुविधा होती तो हम भी मैदान की बजाय स्क्रीन पर ही वक्त बिताते। इस तुलना से हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, तो बेहतर ये होगा कि हम आगे बढ़कर अपने छोटे भाई बहनों और बच्चों को प्रेरित करें। और बच्चे प्रेरित बड़े बड़े कथनों से नहीं होते, वो होते हैं हमारे काम से। और शायद ये एक खूबसूरत बहाना हो सकता है अपनी साइकिल फिर से निकालने का, बच्चों के साथ थोड़ी साइकिलिंग, थोड़ी बातें, थोड़ी मस्ती करने का। क्योंकि यादें सिर्फ बनाई नहीं जाती बल्कि साथ जी जाती हैं। तो एक दिन साइकिल ज़रूर निकालिए और बच्चों के साथ बस यूं ही हंसी, बातों और खुली हवा के नाम कीजिए। दोस्तों, साइकिल की बात सिर्फ बचपन की यादों तक सीमित नहीं है। वक्त बदला है, उम्र बदली है, लेकिन साइकिल की अहमियत आज भी उतनी ही है। बस फर्क इतना है, पहले ये खेल का हिस्सा होता था और आज हमारी सेहत का हिस्सा है। आज जब हम टेक्नोलॉजी के बीच खुद के लिए वक्त निकालने की बात करते हैं तो साइकिल एक बेहतरीन साथी नज़र आता है। लेकिन साइकिल की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। भारत के कई राज्यों में इसी साइकिल ने हज़ारों लड़कियों को पढ़ाई, सपनों और स्वतंत्रता की राह दिखाई। साइकिल सिर्फ आने जाने का साधन नहीं रहा, ये उन लड़कियों की आत्मनिर्भरता और आज़ादी का बना प्रतीक। जब स्कूल कॉलेज दूर होते थे तब कई परिवारों के लिए बेटियों की पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं होता था। ऐसे में साइकिल ने दूरी कम की, लड़कियां खुद साइकिल चलाकर जाने लगी और अपने वक्त का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने लगी। और धीरे धीरे ये साइकिल बना आत्मविश्वास का प्रतीक। दोस्तों, कार्यक्रम में बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं इस खूबसूरत गीत का।

पर आशा भोसले की। इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, आर डी बर्मन ने इसकी धुन बनाई थी। गीत की फरमाइश करने वाले हमारे साथियों के नाम हैं, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सूरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। ततरेंगे भाटापारा से हैं, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। बेवरा संबलपुर से हैं, शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम, तुषार, वंशिका वर्मा। जेल रोड रायगढ़ से हैं, नरेंद्र कुमार, महेंद्र, कौशल, जोई और रिंकी गोस्वामी। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे साइकिल ने हमारे सपनों को पंख दिए, लेकिन साइकिल की खूबसूरती ये है कि ये हर कहानी में एक नया रंग दिखाती है। अगर बात हो साइकिल की, तो इसकी खासियत ये है कि हर व्यक्ति उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखता है। किसी के लिए ये सेहत का साथी है, किसी के लिए रोज़मर्रा का सफ़र और किसी के लिए रोज़गार का आधार। मसलन सुबह सुबह अखबार बांटने वाले भैया को देख लीजिए, गलियों में सब्जी पहुंचाने वाले व्यापारी, या फिर गांव में हमारे वो साथी जो अपने काम तक पहुंचने के लिए साइकिल का सहारा लेते हैं। उनके लिए साइकिल सिर्फ दो पहिए नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन साइकिल की दुनिया यहीं तक सीमित नहीं है। एक तरफ ये आम इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ ये रोमांच और खेल की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान रखती है। सोचिए, जिस साइकिल को हम मोहल्ले, बाजार या गाँव की सड़कों में देखते हैं, उसी साइकिल पर दुनिया के खिलाड़ी हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। फ्रांस में होने वाली प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डी फ्रांस को ही ले लीजिए। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पहाड़, घाटियों और लंबी सड़कों पर अपनी सहनशक्ति और हौसले की परीक्षा देते हैं। शायद इसी ने साइकिल की असली खूबसूरती छुपी है। ये हर उम्र, हर पेशे और हर सपने के लिए खुद को जोड़ देती है। दोस्तों, वक्त हो चला है आपके फरमाइशी गीत सुनने का। गीत हमने लिया है फिल्म हमें रही प्यार के से। आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की। संगीतकार है नदीम श्रवण और इसे लिखा है समीर ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गीत की पसंद हमें लिख भेजी थी श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। मदनपुर कवर्धा से हैं श्रवण कुमार, योगेश और राहुल साहू। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंगेल, शकुन, आयुषी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ। दतरंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। दोस्तों गाने तो बदलते रहेंगे लेकिन कुछ सफ़र दिल में रह जाते हैं और साइकिल का वो सफ़र शायद उनमें से ही एक है। और जो सफ़र दिल के करीब होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते। इसीलिए तो देखिए ना, कोविड जैसे मुश्किल दौर में भी साइकिल ने अपना कमबैक कैसे किया। बस इतनी सी कोशिश कीजिए कि इस बार साइकिल का ये साथ थोड़ा लंबा हो, थोड़ा और करीब हो। जिन दो पहियों ने हमारा बचपन संभाला था वही दो पहिए हर उम्र में हमारे साथी बने रहे। तो दोस्तों साइकिल के साथ यादों का सफ़र यहीं तक और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ जिसका आपको हर हफ्ते इंतज़ार रहता है, पिछले हफ्ते के सवाल और उनके जवाब। हमने आपसे पहला सवाल पूछा था, भारत ने किस समूह के साथ हाल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया? साथियों इसका सही जवाब है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट और जॉब जनरेट होने की उम्मीद है। दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था, भारत का पहला AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? साथियों सही जवाब है भारत मंडपम, नई दिल्ली। इस समिट की थीम थी AI फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। हमारा तीसरा सवाल था, भारत किस बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी 2030 में करेगा? साथियों भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा, जो कि इनका शताब्दी वर्ष भी है। चौथा सवाल हमने आपसे पूछा था, भारत का सबसे बड़ा रेलवे आधुनिकरण कार्यक्रम कौन सा है? साथियों सही जवाब है अमृत भारत स्टेशन योजना, जो देश भर के स्टेशन के आधुनिकरण का काम करेगी। दोस्तों हमने आपसे पांचवा और आखिरी सवाल पूछा था, भारत की UPI सेवा हाल ही में किस देश में लॉन्च की गई? दोस्तों सही जवाब है नेपाल, नेपाल में UPI लॉन्च हुआ। सही जवाब देने वाले हमारे साथियों के नाम हैं, बिलाईगढ़ से हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल देवांगन। बलौदा से हैं दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि। बिलाईगढ़ से हैं खीकाराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन। नौंडी लोहारा से हैं डोमेंद्र, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर नेताम। पंडरिया से हैं पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक और खुशी। कवर्धा से हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशान साहू और निशान साहू। खमरिया से है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक। नानघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। कोरबा से हमारे साथी हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, ममता, मंजू, मानसी, मोहन, सहोदरी, मनमोहन, गिरजाबाई, चंद्रपाल और लक्ष्मी। भरेवा से हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य। पुरानी भिलाई से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन, जिशान, शाहनवाज और सिद्दीकी परिवार। तखतपुर से हैं मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीराबाई, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। बोरसरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी और विभूति साहू। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। दतरंगी भाटापारा से हमारे साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। बलौदा बाजार से हैं नीतू, जीतू, रिया, जया, राहुल, युवराज सिंह सूर्यवंशी। बलौदा बाजार से हैं हमारे साथी पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला, निहारिका, पंकज सिंह सूर्यवंशी, मोहम्मद सूफियान हाशिम, मोहम्मद इशाक, बब्बू।

डब्बू, सनावत से हैं यूनुस, खत्री, शफी, इंद्रिश, नूरू और इरफान, मीना काशिफ, सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा। इसके अलावा हमारे साथी हैं गीता, दिनेश, नामदेव। पेंड्रा रोड गौरेला से हैं आरती साहू, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशा गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी। डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय। इसके अलावा हमारे साथी हैं रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अंबागढ़ चौकी से हैं ओम प्रकाश, सिलोचनी, तुषारणी और हुमेंद्र। भाटापारा से हमारे साथी हैं रोहित साहू, सोनिया, राहुल, सुषमा, दीपा। सरगांव से हमारे साथी हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। भाटापारा से हमारे साथी हैं के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली। बागामुड़ा कोमा खान से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। गोड़ान से हैं श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी, रानी, रजनी, पूजा। मंगे टोला से हैं ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई, फिरत राम और मालती धुर्वे। कोंडागांव से हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का, भवानी चक्रधारी। इसके साथ हमारे साथी हैं गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज, संतोष राजपूत और हेमप्रभा साहू। दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए हमारे सवाल हैं, खगोल शास्त्री वराहमिहिर किस राजा के नवरत्नों में शामिल थे। हमारा दूसरा सवाल है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। रतनपुर स्थित महामाया देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, माफ कीजिएगा, हमारा चौथा और आखिरी सवाल है, छत्तीसगढ़ का कौन सा गांव यूएन टूरिज्म के बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए चुना गया। तो साथियों, मैं थी आपकी दोस्त महक, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा जगत। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12वां साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। विषय होगा मध्यम वर्ग कल्याण। अब से कुछ देर बाद शाम 6:20 पर और 7 से आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। शाम 7:45 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का। रात्रि 8 मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम कुछ ही देर में रायपुर से रिले करेंगे। माफ कीजिएगा, 8 हम रिले करेंगे। रात्रि 8:20 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज आकाशवाणी के कार्यक्रम आप सुनेंगे। प्रायोजित प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और प्रस्तुति सहयोग है रिकॉर्डिंग और संपादन अंतरा चक्रवर्ती का। रात्रि 8:20 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि 9:15 से रात्रि 11 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

और अब कल के मुख्य कार्यक्रम। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा आराधना। 6:30 पर खेती की बात में

0: एक सुझाव दिए जाएंगे मिट्टी के तापमान को संतुलित रखने की तकनीक। वाचन स्वर होगा अभिनव गोराहा का। रामचरित मानस गान का प्रसारण होगा रोज की तरह प्रातः 6:35 पर। 6:45 पर चिंतन आप सुनेंगे। सपना क्या है, आलेख डॉक्टर राजेश टंडन का। आज सुबह का प्रसारण समय होगा 7:05 से। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर और सुबह 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। 10:30 पर नए तरानों का आनंद आप लेंगे। सुबह 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, सुबह 11:30 से 11:55 तक और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे से 5 बजे तक। संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा। शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला का दिल्ली से अनुप्रसारण किया जाएगा। विषय होगा स्वास्थ्य सेवा। शाम के 5:05 पर किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिसमें आज की बात में चर्चा होगी खुररा बोनी के महत्व। फोन इन कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर TD पांडे से किसान भाई बहन अपने प्रश्न पूछेंगे। विषय होगा खरीफ फसलों के उन्नत किस्म का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टेयर। कार्यक्रम का संचालन करेंगे जीतू भैया। साथ होगा गीत संगीत और मौसम मंडी की जानकारी। शाम 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम महिला सभा में आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर सामयिक चर्चा। क्रम पर्यावरण अभिव्यक्ति हरित जीवन शैली अपनों में महिलाओं का योगदान। रात्रि शाम 7:45 पर चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे। रात्रि 8 बजे चिट्ठी मिली कार्यक्रम होगा और रात्रि 8:20 पर शास्त्रीय संगीत का आनंद आप लेंगे। रात्रि 9:15 से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम डिले।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही संग्रह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश। औ प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दू जगह में हल्का हुए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली 4 जून के मतगणना होगी। काली स्तरीय पंचायत चुनाई के परिणाम घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयोग मतगणना के जम्मो तैयारी लगभग पूरा कर ले है। बता दन कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन पर 1 जून के होए रहिस। नगरीय निकाय में अध्यक्ष और पार्षद पद पर हुए मतदान में 84.58% मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग करें। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सरपंच और पंच पद पर 78.61% मतदान दर्ज करेगिस। राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन में राखे गए एक ठिन उच्च स्तरीय बैठका में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ले प्रदेश के नंदिया और बड़का नरवा में होवत रेती के अवैध उत्खनन ऊपर चर्चा करें। राज्यपाल अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के निर्देश दें। उमन कहिन कि रेती राज्य के विकास और बुनियादी ढांचा के निर्माण पर एक अनिवार्य खनिज है लेकिन ओखर अनियंत्रित दोहन ले पर्यावरण ला गंभीर नुकसान पहुंचा थे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कालीचा के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमड़ा में राखे गए जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री के प्रवास लले के जिला कलेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन आज शिविर स्थल के निरीक्षण करके तैयारी के संबंध में जानकारी लीन। एकर पहली मुख्यमंत्री काली कांकेर जिला में सुशासन तिहार के तहत कांकेर कोंडागांव नारायणपुर और बस्तर जिला में संचालित योजना और विकास काम के समीक्षा करें। प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय ह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाला ले जुड़े धन शोधन मामला के जांच के तहत आज राज्य के आने आने

0: जगहमां तलाशी चलाईस। एक कार्रवाई भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकाना में करेगी। तलाशी लिए गए प्रमुख जगहमां पूर्व सीजीपीएसी सचिव जेके ध्रुव के भिलाई स्थित निवास शामिल है। सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरा में ईडी अधिकारी मन दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय लेन देन ले जुड़े अभिलेख के जांच करें। बच्चर 2020 ले 2022 के बीच आयोजित सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता के सीबीआई जांच के आधार में करे जाते। ईडी के टीम दुर्ग जिला के तलपुरी स्थित सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमृत कुमार खलखो के निवास के घलो जांच करीस। अधिकारी मन संपत्ति, बैंक खाता और दूसर वित्तीय अभिलेख ले जुड़े दस्तावेज के परीक्षण करें। इकर अलावा ईडी राजनांदगांव विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास में घलो दपिस दिस। छत्तीसगढ़ में सड़क ऊपर रहिया लैका मन के पुनर्वास पर जून महीना में विशेष सघन अभियान चलाए जाते। राज्य सरकार के बाल सक्षम नीति के तहत सड़क में रहिया भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा सकेले में लगे लैका मन के पहचान करके उमन के बचाव और पुनर्वास करे जाते। अभियान के तहत लैका मन ला सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते। जिला कलेक्टर मन के अगुवाई में गठित विशेष बचाव टीम डहाले चिन्हित हॉटस्पॉट जगह में अभियान चला के लैका मन ला संरक्षण दे जाते। सरकार कहे है कि लैका मन के पुनर्वास सरलक प्रक्रिया है और ये काम साल भर तक चालू रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्चर पूरा हुए में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले आज रतिहा ले छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम के प्रसारण करे जाही। एक कार्यक्रम के बेरा 5 मिनट और एक प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र एके शंकर ही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर की विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हाव। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के हम आप तक पहुंचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगो बढ़ो बाचे समाचार कुती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 25 के लिखित परीक्षा के कार्यक्रम जारी कर दे है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 ले 9 जून तक रखे जाही। परीक्षा हरेक दिन 2 पाली में होगी। पहली पाली बिहनिया 9 बजे ले बजे तक और दूसरिया पाली मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक आयोजित करे जाही। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित करे जाही। आयोग बताए है कि प्रवेश पत्र 25 मई के जारी करे जा चुके हैं। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट ले अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत है। आयोग स्पष्ट है कि कोनो भी अभ्यर्थी ल अलग से प्रवेश पत्र या SMS नहीं भेजे जाही। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के दूसरा अवसर पर मुख्य परीक्षा के समय सारिणी जारी कर दे है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई ले 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई ले 21 जुलाई तक रखे जाही। दोनों परीक्षा बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12:15 बजे तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ ला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सम्मान मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एला राज्य पर गर्व के बात बताई है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाला राज्य मन की श्रेणी में सबले ज्यादा वेंडर पंजीकरण के मामला में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान पाए है। जेखर भर राज्य के चयन PM सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड खातिर हुए है। मुख्यमंत्री ये उपलब्धि पर ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनी के टीम ला बधाई दिन है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना पर आवेदन आमंत्रित। ये प्रमुख राष्ट्रीय पहल के उद्देश्य वैश्विक स्तर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, प्रयोग अनुसंधान संस्थान और उद्योग ले भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ और देश भर के प्रमुख सरकारी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र को आकर्षित करना है। दुर्ग पुलिस शेयर बाजार में निवेश के नाम

अभी समाचार छत्तीसगढ़ी में समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

श्रोताओं, ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप हमें ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गीत लिख भेजते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कार्यक्रम में आपके पसंद के गीत हम आपको सुनवाएं और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के नाम शामिल करें। तो आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस मधुर गीत से, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म से गीत लिया है, आवाज है उदित नारायण की, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है जतिन ललित ने। ईमेल से फरमाइश भेजने वाले हमारे साथी हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस, एकांश गवाणकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं, टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से हैं सुभाष चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश, पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से हैं वलीउल्ला अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नोहारकर, निर्मला, विशाल नोहारकर, सौगा मगर रोड से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन।

कुम्हार दले श्रीरामपुर से हैं, अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले। कर्मा चौक लोहारडीह जिला कवर्धा से हैं, अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साहू। रोहासी से हैं मुकेश साहू, नंदनी, मनीष और मयंक और जानकी साहू। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमिरी कुरासिया कालरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे। मंजू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा। सरगांव से हैं राजेश वर्मा, हिरोमणि पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर। दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु। पाखुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से उदित नारायण का गाया ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत था फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से उदित नारायण की आवाज में। और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म चित्तौर से यशुदास की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गीत के लिए फरमाइश आई है काले गांव जाफराबाद से सुधाकर राजेश जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन, वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नगर नरगोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, महसोल सीतामणि बिहार से हैं मुसर्रत जहानास, तलहत फरहत, रिहत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान उत्तम जमदाड़े, भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से हैं परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दामन और अभिजोत, गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, वीरगाम राजकोट से हैं रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से हैं उमा राजपवन, संजय दीपक और कमल उमा, बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, लूत्रा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से हैं महेंद्र प्रताप, मरकाम जया, जागेंद्र गजेंद्र, जयंती ममता, मनीष मंजू, मानसी सुरेंद्र, मोहन सिंह सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजा बाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, बुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से हैं राधेश्याम पांडे, वीणा विनय, शंकर पांडे, महाराष्ट्र से हैं एड नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, नानघाट कातल बोर्ड से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका निष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म चित्तौर से यशुदास की आवाज में ये गीत।

जो अचानक मिले।

ईमेल करें, गीत सुनें। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म कामचोर से किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत। गीत के बोल इंदीवर के हैं और संगीत राजेश रोशन का। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह की। इसी गीत को सुनना चाहा है पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत, चेतन भगत। साधु शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। दिल्ली शहर से हैं आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी। संबलपुर कांकेर से हैं फागु राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज।

0: श्रोताओं, ई मेल करेगी सुने। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद शाम 7 बजे से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार रायपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।

0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती।
3: अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
5: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
4: प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल 4 जून को मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया था। राज्यपाल रमेंडेका ने आज लोकभवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद से प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर चर्चा की। राज्यपाल ने अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन इसके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। श्री डेका ने कहा कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 4 जून को गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल कांकेर जिले में सुशासन तिहार के तहत कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणाम उन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले की जांच के तहत आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकानों पर की गई। तलाशी लिए गए प्रमुख स्थानों में पूर्व सीजीपीएससी सचिव जे के ध्रुव का भिलाई स्थित निवास शामिल है। ये कार्रवाई वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित सीजीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के आधार पर की जा रही है। ईडी की टीम ने दुर्ग जिले के तलपुर स्थित सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमृत कुमार खलको के निवास पर भी जांच की। अधिकारियों ने संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय अभिलेखों से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके अलावा राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी

0: भूपेन्द्र गणवीर के निवास पर भी तलाशी ली गई। वहीं ईडी ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास पर भी दबिश दी। सूत्रों के अनुसार ईडी कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोत, उससे जुड़ी संपत्तियों तथा वित्तीय लेनदेन की श्रृंखला का पता लगाने के साथ ही मामले में अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रात 8 बजे से छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 5 मिनट की होगी और इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSE ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया है कि प्रवेश 25 मई को जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देशभर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की ओर आकर्षित करना है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्तियों पर सालाना ₹120 की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक संपत्तियों के लिए यूजर चार्ज में सालाना ₹360 की बढ़ोतरी की गई है। ये अतिरिक्त राशि संपत्ति कर के साथ ही वसूली जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। इस बीच बीजापुर जिले के पेरमपल्ली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ के पास चरखर गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग झुलस गए हैं।

और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया।

0: मरम्मत कार्य के कारण कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की लारा परियोजना ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग लेकर। और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं फिल्म आशा से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। गीत के बोल जावेद आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही मोहराज जहां की। इस गीत को सुनना चाहे हमारे इन साथियों ने भी। अडार नानघाट से माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी वर्मा, पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता श्रद्धा अदिति राधे दीपक अंकु राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मेनपाट से हैं अजीत पॉल प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से हैं दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, फादा पलारी से हैं नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशांत लखनलाल सावित्रीबाई देवांगन, खमरिया से हैं साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, बलौदा से हैं दिलहरण गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र शाह, दत्रेंगी भाटापारा से हैं हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से हैं श्रीकृष्ण बाठे संदीप बाठे अमूल्य बाठे, पलारी से हैं प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री, टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम थांदी वामिका और वाणी थांदी, पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चौसलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चौसलिया, राजकोट से हैं जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायाब और लड्डू, हांसी से हैं राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू और डब्बू, जगराव से हैं सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, धुर्रा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू देव नवीन युवराज साहू, नाईवाल जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, बठेना पाटन दुर्ग से हैं बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति निधि निखिल यश प्रयाण शिवम रेखा और धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लाल गिरी गोस्वामी हेमलता हेना हर्षित खुशी गोस्वामी, भिलाई से हैं अशोक कुमार श्याम कुंवर प्रमीला आसमान श्याम कुंवर, गड़ई टिकरी पारा से हैं जागेश्वर देवांगन कचई कचरी बाई दीपक जय।

श्री ऋषभ और ऋचा देवांगन कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम सनावत से हैं मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अल्तमश खत्री मोहम्मद अलकमा खत्री रमेश गोड़ मोहम्मद शादाब खत्री लूथरा खमरिया से हैं अकरम आमीन अर्श आतिका लोहगढ़ ठाकुरगाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल दिलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर गुरनार सिंह और अविराज सिंह रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा करुणा वर्मा नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं आशा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
1: जैसे भी शरद जी ने
0: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है, और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल exiting multi-dimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak, yes, but this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition, because poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना, या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफ स्टाइल विच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स, सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी, बिकॉज दोज पीपल financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या, जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था, भाई ये तो मेरा हक है, वगैरह वगैरह ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, इज कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं? तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है, तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा

0: आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की है, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
1: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
0: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की पर मैं वापस आऊंगी, जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभा। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
0: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल, सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड and lot of youngsters, and today just on Startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed, and government has created a startup fund where you know because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so here government became an angel and I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many homemakers, although I treat homemakers as a very, very active GDP. In fact, actually, we did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP, right, but then they contribute very, very

0: you know, Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch
2: kehna chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई go to a village, I find the things they use, the way they talk, what they wear, the lifestyle they lead is pretty much like a normal town citizen. And there are so many learnings which are happening. A prime minister recently made an appeal which said ki aap online classes lijiye. Kaise ye covid mein hum karte, padhai ki likhai band ho jani thi agar ye connectivity nahi hoti. Bachchon ka koi nuksan covid mein nahi hua. Aaj bhi pradhanmantri ji hum apne videshi mudra bachane ke liye unhone kaha ki aap online classes lijiye. Kyon keh pa rahe hain? Kyunki unko pata hai ki uske piche internet aur digital connectivity ki power aaj
1: hai. Sarkar ne jo pichle 12 saalon mein kaam
0: kiya hai uske aadhar par unhone bola, unko pata hai ki isse koi nuksan nahi hoga aur log waise hi labh utha. So I think this whole or work from home, work from anywhere for that matter. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव who used to live in say Delhi, Mumbai, Bangalore. आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके employer को, उनके clients को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहाँ बैठ के काम कर रहे हैं. That has been the magic of digitalization.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: नहीं, मैं इसमें social security का angle जरूर लाना चाहता हूँ, क्योंकि जो unorganized sector है और जो labour है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो हैं, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होना है.
1: वी हैव सीन इन द लास्ट 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything, for example highways, any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue with that commuter does.

0: एंड उड़ान, हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक, वेल अ प्लेन जर्नी यूज टू बी अ ड्रीम फॉर पीपल, के हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगी बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेस्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हैं वो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो

0: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का तक का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिला जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुमा नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है, और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाए तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा अनुभव, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं। आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी
0: देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली 3 हिस्सों में बांटता हूं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashwani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक।

टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News On Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

अभी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला मध्यम वर्ग कल्याण योजना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:45 हुए हैं। आइए आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं छोटी सी बात फिल्म से यशुदास और आशा भोसले के युगल सरों में ये गीत। गीत के बोल योगेश के हैं और संगीत सलील चौधरी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। महिला सभा कार्यक्रम हेतु एक सूचना है। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता का प्रसारण महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 9 जून 2026 दिन मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। जो फोन पर आधारित कार्यक्रम है, हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी नेचुरोपैथी और योगा की डॉक्टर अर्चना अग्रवाल जी। आपसे चर्चा का विषय होगा डॉक्टर से सीधी बात, महिलाओं के स्वास्थ्य में योगा की भूमिका। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पे। फोन नंबर है हमारे पिन कोड सहित 07752310026। दूसरा नंबर है 266592। हमारे फोन का कोड लगाना न भूलें, 07752। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म आज का अर्जुन से। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वरों में है ये गीत। गीत के बोल अनजान के हैं और धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर टीडी पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में उन्नत किस्मों का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टर, और सुबह 11:00 से 11:30 तक का विषय होगा बीज एवं पौध उपचार का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 4 जून 2026 और 5 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये गीत।

ये गीत हमने लिया है फिल्म भीगी पलकों से, भीगी पलके से। गीत के बोल लिखे हैं एमजी हसमत ने और संगीत जुगल किशोर तिलकराज का है, और इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत में भी आपने सुना फिल्म भीगी पलके से आशा माफ कीजिएगा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल स्वरों में ये गीत। इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम कुछ ही देर में हम रायपुर से रिले करेंगे।

यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। बजे हैं मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की है।

जय जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम के संग मैं स्मिता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार हा पाछू 26 मई के 12 बच्छर पूरा करीस। 26 मई 2014 के नरेंद्र मोदी हा प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहीन। प्रधानमंत्री बने के बाद 12 बच्छर के दौरान श्री मोदी हा देश के हित मा कतकुन बड़े फैसला करीन हे। एमा जम्मू कश्मीर ले अनुच्छेद 370 ला खत्म करना, वस्तु और सेवा कर जीएसटी, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, अग्निपथ योजना, अयोध्या मा राम मंदिर के निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, नवा शिक्षा नीति संग्रह कतकुन फैसला शामिल है। उन्हें श्री मोदी के कार्यकाल में कतकुन जन कल्याणकारी योजना घलो लागू करेगी है। एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में भारतीय जनता पार्टी डहरले छत्तीसगढ़ संग्रह देशभर में 5 ले 21 जून तक 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के थीम में अभियान चलाया जाए। यह अभियान के उद्देश्य सरकार के 12 बच्छर के बड़े उपलब्धि, जन कल्याणकारी योजना और विकास के काम ला लोगन तक पहुंचाना है। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मन हा लोगन के घर मा जाके उनखर मन ले गोठ बात करके सरकार के योजना के जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा केंद्र मा एनडीए के 12 बच्छर पूरा होए मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला बधाई दीन है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि श्री मोदी के दूरदर्शी निर्णायक और

0: केंद्रित अगुवाई में भारत हा सेवा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और विकास के नवा युग में प्रवेश करे हे। सोशल मीडिया हैंडल एक्स में पोस्ट कर श्री साहा कहिन कि पाछू 12 बछर में श्री मोदी हा सेवा, सुशासन और अंत्योदय के भावनाला केन्द्र में रखिन और निश्चित करिन कि विकास के फायदा समाज के आखिरी मनखे तक पहुंचाए। उमन कहिन कि गरीब किसान, माइलोगिन, युवा, वंचित और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए के जौन संकल्प प्रधान ले रहिन वह आज देश में दिखत है। मुख्यमंत्री हकीन कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में श्री मोदी के नेतृत्व विशेष रूप ले प्रेरणादायी रहे है। कई बच्चर तक नक्सल हिंसा ले प्रभावित बस्तर और वनांचल क्षेत्र में आज विकास, विश्वास और जन कल्याण के नवाधारा दिखत है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधा और शासकीय योजना के पहुंच दूरस्थ जनजातीय अंचल तक निश्चित हुए है, जेखर ले लोगन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए है। श्री साह कहिन कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, जनधन योजना और दिया योजना जैसन योजना ले गरीब किसान, मातृशक्ति, युवा और जनजातीय समाज के जीवन में आत्मविश्वास के हुए है। उमन कहिन कि योजना के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाए के प्रधानमंत्री शासन ला ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार बनाए है। मुख्यमंत्री हकीन कि श्री मोदी हा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र ला सिर्फ नारा भर नहीं रहन दिन, फिर ओला व्यवहार और नीति के आधार बनाइन। मुख्यमंत्री हकीन कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व हा देश ला सिर्फ आर्थिक रूप ले मजबूत नहीं बनावत है, फिर सांस्कृतिक आत्मगौरव, राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारी की भावना ला घलो नवा ऊर्जा देवत है। मुख्यमंत्री हकीन की छत्तीसगढ़ सरकार हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जन कल्याण, सुशासन और अंत्योदय के संकल्प ला आगू बढ़ाए बर प्रति है। राज्य सरकार ये निश्चित करत है कि केंद्र सरकार की योजना के फायदा प्रदेश के आखिरी मनखे तक पहुंचे और विकास के फायदा समाज के हर वर्ग ला मिलाए। श्री साह कहिन की प्रधानमंत्री श्री मोदी के अगुवाई में भारत राष्ट्र बने के संकल्प ला नवा ऊंचाई तक पहुंचा ही। ता अभी आप सुनत रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम। एकरे संग स्मिता शर्मा के जय जोहार।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार रायपुर की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब सुनते हैं संगीत। गैम्बलर लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में इस फिल्म का गीत। इसकी धुन बनाई है SD बर्मन ने और इस गीत को लिखा है नीरज ने।

अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम, जिसे हम रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज आकाशवाणी। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, प्रस्तुति सहयोग रिकॉर्डिंग और संपादन अंतरा चक्रवर्ती का।

श्रोताओं, आवाजें हमें बुलाती हैं और हम खींचे चले जाते हैं उसी ओर जहां से कोई चेहरा हमें दिखाई तक नहीं देता। सुनाई देती है तो केवल चेहरों के बीच से गूंजती आवाजें, जो अदृश्य होकर भी बयां करती हैं अपने ही रूप, गंध, सुर, ताल और लय के साथ भावनाओं की एक ऐसी कारीगरी जो बाद आवाजों के भी हमारे साथ चलती रहती है बहुत देर और बहुत दूर तलक। यकीनन ये दुनिया रेडियो की दुनिया होती है।

0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी यानी हमारी और आपकी प्यारी आकाशवाणी के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष की इस गौरवशाली समृद्ध यात्रा के हम और आप दोनों ही हैं संवाहक। तो चलिए इन 90 वर्षों के अभूतपूर्व अनछुए पहलुओं से आज हम होते हैं मुखातिब और सबसे पहले कार्यक्रम में जुड़ते हैं आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख श्री लखनलाल भौरे जी से, जिन्होंने अपनी एक भरपूर समृद्ध यात्रा तय की है रेडियो जगत के सफर में। तो भौरे जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार।
1: नमस्कार अंतरा जी और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, धन्यवाद।
0: आपसे बातचीत की शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपको अपने पुराने केंद्र यानी आकाशवाणी बिलासपुर से जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है?
1: याद ताजा हो गया अंतरा जी, क्योंकि कभी कभी जब कोई कूड़े दे कोई जगह के बारे में, किसी कार्य के बारे में, तो पुरानी बातें याद आना स्वाभाविक ही है। मैं जब आकाशवाणी सूरतगढ़ से 1993 में आकाशवाणी बिलासपुर आया, तो चूंकि मैं दूसरे प्रांत में था, आकाशवाणी सूरतगढ़ राजस्थान में है, और जब मैं आकाशवाणी बिलासपुर आया, ये चूंकि छत्तीसगढ़ में है और ये मेरे जन्म स्थली कार्य क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्रों में से एक था आकाशवाणी बिलासपुर, तो मुझे लगा कि मैं मायके आ गया हूँ।
0: क्या बात है।
1: हाँ, ऐसा अनुभव हुआ। और कार्यक्रमों के बारे में, चूंकि मैं रेडियो शुरू से सुनता रहा हूँ और छत्तीसगढ़ अंचल में लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य बहुत समृद्ध रहा है, और चूंकि मैं रेडियो से जुड़ गया और जुड़ने के बाद मुझे पता चला आकाशवाणी बिलासपुर का जो अंचल है साहित्यिक प्रेमियों का गढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक तो रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर, ये तीनों संस्कृतियों का धनी रहा है, कला संस्कृति, साहित्य संस्कृति का। तो मैं जब आकाशवाणी बिलासपुर आया तो कार्य करने का अनुभव मेरा और बढ़ता गया, रुचि लिया। मैं गांव भी जाता था, लोक कलाकारों की रिकॉर्डिंग भी करता था और यहाँ स्टूडियो आ करके उसको डबिंग करके प्रसारित करते थे। क्योंकि अंचल का था इसलिए लोगों का जुड़ाव मेरे से बहुत अच्छा हो गया, उसे सहयोग भी करते थे कलाकार लोग बाक सहयोग करते थे। बहुत से कार्यक्रम हमने जब शुरू किया, मैं चूंकि

0: युवानी, बच्चों कार्यक्रम, महिलाओं कार्यक्रम, श्रमिकों का कार्यक्रम और इस तरह से विज्ञान जगत जैसे, खेल जगत जैसे, इस तरह से स्पेशल ऑडियंस, विशेष श्रोताओं का जो कार्यक्रम मैं जब देखता था, तो ये सब कार्यक्रम गांव में जाके करता था तो लोगों का जो सहयोग है, लोग अपनी अनुभव को साझा करते थे, तो उसको ला करके जब प्रसारित करते थे और जब सुनते थे और पत्र भेजते थे तो लगता था कि मैं आया हूँ, मेरा आना बहुत सार्थक हो गया, तो मैं बहुत प्रसन्न होता था। ये मेरा अनुभव, मेरा वहाँ आकाशवाणी का जो जानकारी है बहुत अच्छा रहा है।
1: सर, आज का सुंदर दिन आपकी यादों को साझा करने का दिन है। हम ये जानना चाहेंगे कि एक कार्यक्रम प्रमुख के रूप में आपने अपनी इतनी समृद्ध सेवाएं दी हैं रेडियो के जगत में, रेडियो के सफर में बहुत सारी ऐसी चीजें भी घटित हुई होंगी सर, जिस समय आपको तत्काल किसी निर्णय पे पहुंचकर एकदम से कार्यक्रम को संभालना पड़ा होगा। कई बार हमारे तकनीक भी बहुत हद तक साथ नहीं दे पाते हैं। उस समय की कोई याद हो, कुछ ऐसा वाक्या हो अब तक आपके स्मृति में अंकित हो, वो
0: यहाँ पर चाहेंगे। क्योंकि कार्यक्रम जो है टीम वर्क का होता है, टीम वर्क यानी ऐसा अभियांत्रिकी विभाग, प्रशासनिक विभाग, कार्यक्रम, ये सब जब एक साथ जब मिलके करते, सभी का सहयोग, बाहर जाते थे तो मशीन वगैरह लेकर के और बहुत से ऐसे कार्यों में प्रशासनिक सहयोग, तो संसाधन वगैरह जुटाने का तो प्रशासनिक विभाग के द्वारा, तो जब ये जिम्मेदारी और अनुभव और जब बढ़ने लगा तो ये सब जो है चीजें दिक्कत के रूप में आने लगी, तो वो सब समाधान भी होते चला गया। यहाँ से हमने क्रिकेट मैच का रिटायर्ड पर्सन भारतीय खिलाड़ी और रिटायर्ड पर्सन पाकिस्तान की क्रिकेट खिलाड़ी, इनका जो है क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी बिलासपुर से कोरबा स्टेडियम से लिंक करके पूरे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनाए थे। तो एक महत्वपूर्ण अनुभव उस समय का रहा, ये लगभग 1998-99 की बात है, राजस्व अर्जन भी प्राप्त हुआ, तो एक पंथ दो काज जैसा हो गया और आकाशवाणी बिलासपुर अच्छा से स्थापित भी हो गया, तो ये एक महत्वपूर्ण आकाशवाणी उस बिलासपुर का रोमांचक पल रहा। एक तो ये रहा, दूसरा जो है बहुत से चुनाव, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, तो मतदान का जो सीधा प्रसारण हम करते थे, मैं खुद जाता था और मतगणना का सीधा प्रसारण करते थे, उसमें भी मैं खुद जाया करता था और वहां से जिस जगह से मतगणना होते थे, जहां पर विशेष रूप से मतदान संबंधी प्रक्रियाएं संपन्न होते थे, तो वहां पर जो जिलाधीश वगैरह होते थे, अतिरिक्त जिलाधीश वगैरह होते थे, उनका हम सीधा सजीव प्रसारण करते थे, उनसे हम बातचीत करते थे, तो उस समय के तात्कालिक स्थिति और परिणाम का तात्कालिक पोजीशन, स्थिति, ये सब बताते थे, तो श्रोता समसामयिक जो स्थिति है उसको अवगत होते थे और बहुत प्रसन्न होते थे। मैं एक बार जांजगीर चांपा तरफ चुनाव के मतगणना और मतदान के लिए जा रहा था, पानी गिर रहा था उस समय, हमारी गाड़ी वो खराब हो गई, अब ड्राइवर भी अब क्या करे, पानी जो है घुटने भर, वहीं पर ट्रक वरक वाले को देखा, ट्रक में बैठा मैं, और चूंकि हमारे को उस समय टाइम अलाट होते थे, आकाशवाणी बिलासपुर के लिए ये टाइम, ये समय ऐसे निर्धारित होते थे, तो मुझे भी वो समय निर्धारण में लिया गया था, तो मैं भी उस समय से बंधा हुआ था, तो मेरे को उस समय उस चंक में मेरे को बोलना ही था, मेरे को जानकारी देना ही था अपनी उस अंचल के बारे में, उस मतदान केंद्र के बारे में, तो मैं ट्रक में बैठा और ट्रक में बैठ करके मतदान जो केंद्र है वहां तक पूरा पहुंचने का प्रयास किया और पहुंच गया, और जैसा वैसा सब इस घुटने तक के पेंट वेंट को मोड़ करके पहले मैं पोजिशन जाना उस केंद्र के बारे में, कितना प्रतिशत अभी तक के हुआ है और क्या क्या स्थिति है, कितने लोग आए क्या, तो संपूर्ण जानकारी, तो वो आंकड़ा लेकर कि मैं जिलाधीश महोदय के पास गया, तो वो सजीव प्रसारण हुआ, और ये आत्मसंतुष्टि की भी बात होती है, और जिस उद्देश्य से हम बाहर निकले रहते हैं उस आकाशवाणी केंद्र के बिहाफ में, उसके प्रतिनिधित्व के रूप में, तो उस आकाशवाणी केंद्र के लिए गौरव की बात होती है, और श्रोता बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे में।
1: सर, आप अपनी स्मृतियों को जब साझा कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम बस अतीत के गलियारों से गुजरते हुए उस दौर में पहुंच चुके थे, लेकिन अपनी सीमाएं हैं समय की। इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि आप अपने सुनने वालों को रेडियो के इस 90 वर्ष के समृद्ध और उपलब्धिपूर्ण सफर के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे।
0: मैं तो ये कहूंगा 90 वर्ष का जो आकाशवाणी का जो सफर रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के संदर्भ में, आकाशवाणी ग्रामीण अंचल।

0: का एक आभार और जानकारी मूलक माध्यम रहा है। तो मैं तो कहूंगा आकाशवाणी लोगों का, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए व्यक्तित्व निर्माण, उनके जानकारी को समृद्ध करने का एक आधार स्तंभ रहा है। आकाशवाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्तित्व निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है। अब यहाँ कोई चैनल बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ रेडियो शुरू कर दीजिए, बटन घुमा दीजिए और आते रहेगा, आप अपना काम करते रहिए, बाधा भी नहीं पहुंचा। प्रतियोगिताओं में जो भाग लेते हैं परीक्षार्थी, वो रेडियो सुनते रहते हैं। यहाँ के जो समाचार को सार्थक माना गया है, तथ्यात्मक माना गया है, तो ऐसा एक माध्यम रहा है आकाशवाणी, और 90 साल का सफर तो बहुत बढ़िया रहा है।
1: रेडियो की प्रासंगिकता को लेकर आपके विचार क्या हैं?
0: चूंकि अभी वर्तमान स्थिति में इसके कंपटीटर बहुत हो गए हैं, चूंकि आकाशवाणी का जो टेक्नोलॉजी है अपन आप में अलग किस्म का है, मोबाइल में भी आ गया है, पहले फोन इन होता था, चिट्ठी पत्री से माध्यम से जुड़ते थे, अब ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सब कार्यक्रम हो रहा है। तो नया टेक्नोलॉजी को तो स्वीकारना भी पड़ेगा, अपनी संस्कृति, अपनी साहित्य, लोक संस्कृति की मर्यादा, इसको भी बनाए रखना पड़ेगा और उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यही मैं आज के श्रोताओं को भी कहूंगा, रेडियो लगातार सुनते रहें, तो इस तरह से रेडियो का महत्व है और आगे भी महत्व रहेगा।
1: बहुत सारी शुभकामनाएं और खूब सारा धन्यवाद आपको कि आपने इतनी समृद्ध बातचीत आज हमसे साझा की और अपने श्रोताओं से आप मुखातिब हुए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अंतरा जी, सभी श्रोताओं को एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।

0: श्रोताओं, आज का दिन यादों को साझा करने का दिन है, तो आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्षों के इस सफर के उत्सव में अब हम जुड़ने जा रहे हैं आकाशवाणी की पूर्व केंद्र निदेशक श्रीमती कविता सिंह जी से। तो कविता जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार श्रोताओं, और अंतरा तुम्हें भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
0: आपसे बातचीत की शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपको अपने पुराने केंद्र यानी आकाशवाणी बिलासपुर से जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है।
1: हम उस दौर के उस पीढ़ी के बचपने से गुजरे हैं जब रेडियो के अंदर झांक कर ये देखने का प्रयास किया जाता कि अंदर कौन है, इतनी बुलंद और मजबूत आवाजें किसकी है। और अंतरा में सच बताऊं, मैं बेझिझक ये कह सकती हूँ कि उनमें से एक मैं भी थी जो ये जानना चाहती थी कि अंदर कौन है,
0: क्या बात,
1: ये किसकी आवाज है। रेडियो का साथ उस वक्त से है जब हमारे घर की बैठक की शान हुआ करता था रेडियो, वो भी लाइसेंस धारी श्रोताओं को याद दिलाते चलूं कि 60-70 के दशक में रेडियो का लाइसेंस जरूरी था। जिनके पास रेडियो था ना, उन्हें रेडियो का लाइसेंस लेना जरूरी होता था। जैसे आजकल हमारे घरों में गैस सिलेंडर कार्ड होता है ना, वैसे ही रेडियो टीवी लाइसेंस कार्ड उस समय हुआ करता था, और ये स्थानीय पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किया जाता था, और इसे हर साल रिन्यू भी कराया जाता था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और एक शुल्क लिया जाता था जो पोस्ट ऑफिस में ही जमा करना होता था। ये एक राजस्व बढ़ाने के लिए ये शुल्क लिया जाता था। बाद में इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि सरकार के पास बहुत से साधन उपलब्ध हो गए रेवेन्यू अर्न करने के। ये एक जानकारी थी जो मैं साझा करना चाह रही थी। अभी मैं कह रही थी रेडियो सीलोन सुनते थे, है ना, हवा महल भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम सुना करते थे। ऐसे ही एक और प्रोग्राम हुआ करता था, वो रविवार के दिन आता था दोपहर में 12:15 के बीच, शायद 15 मिनट का होता था, जिसमें फिल्मी दुनिया का सफर, जिसमें एक फिल्म की कहानी को लेकर बात की जाती थी और उसके गीतों को भी शामिल किया जाता था। टॉकीज में तो देखना बच्चों के लिए उस समय आसान नहीं था, तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था मनोरंजन का जिसमें हम फिल्मों की कहानी भी सुन लेते थे और गीत भी सुन लेते थे। पहली फिल्म मैंने जो सुनी आज तक मुझे याद है, और वो फिल्म थी अनुराग।
0: क्या बात।
1: और उसका गीत ना अंतरा बहुत ही प्यारा, और अभी

0: सामयिकता आज भी बरकरार है। मन की बात को ही ले लीजिए, मन की बात के माध्यम से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसे जीवित रखा है और उम्मीद है कि कितना भी विकास करता चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए, हमारा रेडियो हमेशा साथ देता रहेगा अपनी नई नई जानकारियों से।
1: रेडियो ने ग्रामीण विकास और जन जुड़ाव को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व कार्य किया है, जो यकीनन रेडियो के जरिए ही संभव हो सका।
0: बिल्कुल तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि राजस्थान जैसे छोटे छोटे वीरान टाइप के जो गांव है, वहाँ तो सुविधाएं नहीं है, बिजली की जैसे व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थानीय रेडियो ये उनसे जुड़ता है। एक प्रशिक्षण के दौरान बताया गया था कि वहाँ एक नाड़ू करके एक बीमारी हुआ करती थी, उससे बहुत ग्रसित से बहुत से मतलब गाँव भर के लोग, तो उसका इलाज हमारे रेडियो के माध्यम से किया गया था उनको जागरूक करके।
1: अरे वाह,
0: गांव-गांव जाकर रिकॉर्डिंग किया करते थे, लोगों से मिलते थे, श्रोताओं से, बहुत आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था, मन को छू लेता था।
1: आप चलते चलते श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने एक पारिवारिक माहौल में आकाशवाणी बिलासपुर में कार्य किया और रेडियो से बहुत सारी ऐसी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब तो ऐप का जमाना आ गया है,
1: बिल्कुल अलग अलग एप्लीकेशन आ गए हैं,
0: आप सुन सकते हैं। और रेडियो को जो पुराने समय से आपके साथ है, आपका साथी बना है, उसे ना भूलाएं।
1: कविता जी, आज आपसे हुई बातचीत हमें थोड़ा सा और समृद्ध कर गई। आप हमसे जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका। श्रोताओं, आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों से अलग अलग मूड के फ्लेवर के कार्यक्रम हमेशा प्रसारित किए जाते रहे हैं और श्रोताओं द्वारा सराहे भी जाते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रमों की बात ही निराली होती है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में ऐसे बहुत सारे प्रस्तोता हैं जिन्होंने अपने समय में प्रतिमान गढ़े हैं। ऐसे ही एक वरिष्ठ प्रस्तोता के साथ इस वक्त हम मुखातिब हैं और उनका बहुत आदर और सम्मान के साथ हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। सैयद अल्ताफ हुसैन, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार अंतरा, और रेडियो सुन रहे सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और जैसा आपने बताया कि ये 90 साल हमारे आकाशवाणी के पूरे हो रहे हैं, तो हमारे जितने भी रेडियो सुनने वाले श्रोता हैं और हमारे रेडियो को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता हैं, हमारे इंजीनियर हैं, हमारे अनाउंसर हैं, उन सब की मेहनत भी है इसमें और हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं।
1: अल्ताफ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बदलते वक्त के साथ रेडियो जैसे संचार क्रांति के माध्यम की प्रासंगिकता पर कितना असर पड़ा है, क्या देख पाते हैं आप?
2: देखिए अंतरा, ये सीधी सीधी बात है दिल से जुड़ाव की, और रेडियो जो पहले सुनते थे वो आज भी सुनते हैं। हाँ, हालांकि नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको रेडियो का चस्का लगा नहीं, हम लोगों का दौर अलग था, एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो के अलावा कोई भी माध्यम नहीं था। और हम उस दौर में थे जब रेडियो पे अमीन सयानी साहब की आवाज सुनाई देती थी, हम श्रीलंका से फिल्मी गाने सुना करते थे, विविध भारती से प्रोग्राम सुना करते थे, तो ये हमारे एंटरटेन का एक सबसे बड़ा जरिया था। और खासतौर पे बिनाका गीतमाला की वजह से और रेडियो से हम लोगों का जुड़ाव हुआ। और चूंकि उस दौर में, जिस दौर पे हम लोगों ने कॉलेज किया, 80-84 की बात बता रहा हूँ, उस समय एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो एक बहुत जरूरी चीज हुआ करती थी, क्योंकि घर से परमिशन होती नहीं थी कि आप सिनेमा देख सके, तो टेलीविजन था नहीं, तो क्या कर सकते थे। और उस समय अगर क्रिकेट का भी आपको शौक होता तो कमेंट्री आपको रेडियो में ट्रांजिस्टर पे छोटे छोटे उस पे सुना करते थे। थोड़ा कुछ गाने का अगर बहुत ज्यादा शौक था तो वॉकमैन ले लिया करते थे। तो उस दौर की बात अलग है, और आज की जो पीढ़ी है उनको मोबाइल पे कैमरा भी मिल रहा है, उनको कैलकुलेटर भी मिल रहा है, उनको दुनिया जहां की गूगल पे सारी चीज मिल रही है, अब चैट जीपीटी जैसी चीजें भी मिलने लगी हैं, तो उनको रेडियो नहीं समझ में आता है। ये हो सकता है कि उनकी फैमिली के अगर कोई कार में FM बज रहा है तो वो उनको लगता है कि हाँ चलो अच्छा ये रेडियो भी है, तो फर्क तो बहुत आया है।
1: ये बताइए कि आपने अपने दौर में कुछ नायाब कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उनकी धूम उस वक्त थी, लेकिन जानकारी जब हमने खंगाली तो हमें पता चला कि वो कार्यक्रम अब तक अपने निर्धारित समय में प्रसारित होते हैं और श्रोताओं

0: द्वारा पसंद भी किए जाते हैं। अपने कार्यक्रम के बारे में बताइए।
1: रेडियो एक नशा जैसा था बचपन से ही। धीरे धीरे जब मौका मिला तो वॉइस टेस्ट हुआ, हम लोगों ने भी दिया और उस समय सिलेक्शन हो गया। और एक जुनून था बचपन से, पता नहीं लगता था कि मैं कुछ करूंगा, आकाशवाणी में जाऊंगा तो कुछ करूंगा। तो उस करने का मौका मिला और फिर ऐसे लोगों को खोजते भी रहते हैं कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। तो सीखने का भी बड़ा मन था, बोलने से ज्यादा मुझको मशीनों से खेलने का बड़ा शौक था। और उस दौर में और इस दौर में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले स्टूडियो में मिल्टॉन मशीनें लगी होती थी, इंटर्न टेबल होता था, उस पे हम लोग रिकॉर्डिंग किया करते थे। आजकल तो सारा डिजिटल हो गया है, अब मेरे ख्याल से सिर्फ लैपटॉप और एक कंसोल और एक माइक्रोफोन होते हैं। पहले खूब सारी मशीनें हुआ करती थी, तो उन मशीनों को देख के बड़ा मजा आता था। उसको कैसे चलाया जाता है ये जानने की उत्सुकता रहती थी। हमारे जितने सीनियर पैक्स होते थे उनसे जाके रिक्वेस्ट करते थे कि सर ये इस मशीन में कैसे करते हैं, उसमें कैसे करते हैं, साउंड इफेक्ट कहाँ से निकालते हैं। उस समय तो बड़ी मुश्किल होती थी ना वो सारी चीजों को इकट्ठा करना, तो एडिटिंग डबिंग मिक्सिंग ये काम करने में मेरे को बड़ा मजा आता था। आज भी अंतरा जी मैं आपको बताऊं कि मुझको लगता है कि मैं आंख बंद करके वो तीन मेल्टॉन मशीन को एक साथ चला सकता हूँ, और वो फेडर को कैसे देना, और टर्न टेबल दो हमारे टर्न टेबल रहते थे, उसको कैसे उस गाने को एकदम क्यू करके उसकी म्यूजिक से उस गाने को हम आगे रिकॉर्ड करना है, तो बड़ा मजा आता था वो मशीनों से खेलने का।
0: बहुत बारीक प्रक्रिया होती थी, बहुत बारीक,
1: उसमें रीटेक के चांस नहीं। आज तो डिजिटल है, आप पूरा आप एक एक पॉज को आप एडिट कर सकते हैं। उस समय एडिटिंग वगैरह ऐसा नहीं होती थी, जो हो गया वो हो गया, जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया।
0: तो आपका एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम हुआ, लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ जो बहुत पसंद किया गया, उस तरफ बढ़ना चाहते हैं।
1: हाँ हाँ, आपको मैं बताऊं कि उसी दौर में तपन जी ने एक मुझको एक जिम्मेदारी दी कि यार युवाओं को उसमें इन्वॉल्व करना है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के एक क्यूज का प्रोग्राम बनाओ। उस समय एक जिज्ञासा कार्यक्रम होता था, उसको भी मैं प्रोड्यूस किया करता था, वीकली था ये। तो उसी तरह का एक प्रोग्राम था, तो मैंने चार पांच सवाल की स्क्रिप्ट मैंने बनाई। दो सवाल एक डायलॉग के होते थे, चूंकि एलपी रिकॉर्ड्स में देखिएगा कि पहले डायलॉग के साथ फिर गाने आते थे, तो एक डायलॉग का रखा, एक गाने का रखा कि उसमें म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर या किसका प्रोडक्शन है उसका नाम जानना, क्योंकि उस दौर में और आज के मैं एक आपको अंतरा जी बेसिक डिफरेंस बताता हूं कि पहले किसी चीज को खोजना बहुत मुश्किल काम था, आज आप गूगल पे कुछ सेकंड में हर चीज खोज सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पहले आपको लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ता था, या आपका जनरल नॉलेज अच्छा हो तब आप उसको खोज सकते थे। तो वो क्यूज प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यही था कि आपको खोज के सवालों के जवाब देने हैं। तो पांच सवाल थे, फिर सात सवाल हुए, फिर इसका नामकरण हुआ इंद्रधनुष। और आपको बता दूं, अब मुझको बड़ा गर्व होता है कि लगभग 20 साल हो गए आकाशवाणी में इस प्रोग्राम को, 183 एपिसोड मैंने प्रोड्यूस किया, उसके बाद मैंने उस प्रोग्राम को छोड़ा, लेकिन आज तक वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तकरीबन 20 साल हो गए,
0: बेहद गौरव की बात। और देखिए आज की हमारी बातचीत का जो टॉपिक है कि आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर का, हम अलग अलग तरह की यादों को आज साझा कर रहे हैं। तो देखिए ये जो आपने बात कही, तकरीबन 20 साल से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और श्रोता लगातार जुड़े हुए हैं, तो यही तो हमारी उपलब्धि है ना।
1: हाँ बिल्कुल है, और रेडियो की उपलब्धि देखिए कभी खत्म नहीं हो सकती। आप चाहे जैसा भी हो, इंटरटेन के दूसरे रास्ते भी हो, जो लेकिन जो पुराने लोग हैं वो भले वो आजकल रेडियो में भी आपके जो चैनल्स हैं वो डिजिटल हो गए हैं, वो मोबाइल पे भी आपके चैनल्स हम सुन सकते हैं, तो वो कम नहीं हुआ है। रेडियो खत्म नहीं हो सकता, ये मान के आप चलिए। ये बदलाव का दौर है, हर चीज का वक्त होता है, लेकिन रेडियो कभी मेरे को नहीं लगता कि कभी खत्म हो सकता है। नहीं,
0: ये जो हमारा एक मूल मंत्र है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, इस आदर्श वाक्य की जीवंतता अभी तक कायम है
1: जी, और रहेगी।
0: आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका,
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। श्रोताओं, ये थी आज की हमारी मुलाकात, और अब चलते चलते आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष के इस सफर को हम समेटना चाहेंगे मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस शेर के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज आकाशवाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और प्रस्तुति सहयोग रिकॉर्डिंग और संपादन अंतरा चक्रवर्ती का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। लीजिए कार्यक्रम सुनिए रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऐश्वर्य का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज रजनीगंधा कार्यक्रम हमने सजाया है एक ऐसी गायिका की याद में जिसकी आवाज में दर्द था, मिठास थी और एक मासूमियत थी जो सीधे दिल तक जाती है। उस गायिका का नाम है सुमन कल्याणपुर। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। तब का ढाका भारत का हिस्सा था। उनका असली नाम था सुमन हेमंती। 1947 के बंटवारे के बाद उनका परिवार कलकत्ता आ गया। सुमन जी के पिता शंकर राव हेमड्डी और माता सीता हेमड्डी थे। एक भाई और 5 बहनों में सुमन कल्याण जी सबसे बड़ी थी। 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपना संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुमन जी की हमेशा से चित्रकला और संगीत में रुचि रही थी। मुंबई के प्रसिद्ध सेंट कोलंबा हाई स्कूल में से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चित्रकला में आगे पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। इसके साथ ही उन्होंने पुणे के प्रभात फिल्म्स में के संगीत निर्देशक और एक करीबी पारिवारिक मित्र पंडित केशव राव भोले से शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। सुमन जी के अनुसार शुरू में गायन सिर्फ उनका शौक था, लेकिन धीरे धीरे संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुमन जी का ये हिट गाना।

श्रोताओं, संगीत सीखने की ललक ने उन्हें उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नौरंग से संगीत की शिक्षा के लिए वहां उन्होंने उनसे शिक्षा ली। श्रोताओं, सुमन जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि घर में हर किसी का कला और संगीत के प्रति झुकाव था, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन के लिए सख्त मनाही थी। फिर भी मैं 1952 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने की पेशकश के लिए मना नहीं कर सकी। यह मेरा पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था, जिसके बाद मुझे वर्ष 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्रांची चांदनी के लिए गाने का मौका मिला। श्रोताओं, 1954 में रिलीज मंगू फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में सुमन कल्याणपुर ने प्रवेश किया। इसी वर्ष उन्होंने दरवाजा फिल्म के लिए संगीतकार शौकत अली हाशमी के संगीत निर्देशन में 5 गाने गाए, जो कि इस्मत चुगताई द्वारा निर्मित और शाहिद लतीफ द्वारा प्रदर्शित थे। 1954 में ही आर पार फिल्म के लिए मोहम्मद रफी और गीता दत्त के साथ ओपी नैयर के हिट कलाकारों की टुकड़ी के गीत मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है को गाया। सुमन जी के अनुसार इस गीत के एक कोरस गायिका के रूप में उनकी आवाज का उपयोग किया गया। उन्होंने मंगू, मियां बीवी, राजीव, बात एक रात की, दिल एक मंदिर, जहां आरा, सांझ और सवेरा, नूर जहां, साथी, पाकिजा जैसी मशहूर फिल्मों में गाने गाए। मराठी फिल्म पसंत आहे मुलगी के लिए सुमन जी का पहला सुपरहिट गीत भूतकली का खल मंडीला था। इसके संगीतकार वसंत प्रभु थे। उसके बाद उन्होंने 20 साल पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुत्रावाहा, ऐसा, इक्ति, मानिनी और अन्नपूर्णा उनकी कुछ यादगार मराठी फिल्में थी, लेकिन मराठी फिल्मों के बाहर भी उनकी हिट विरासत और मराठी फिल्मों के 50 से अधिक कालातीत रत्न, भावजीत और भक्ति गीत शामिल हैं। उन्होंने 740 से अधिक फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। उन्होंने 60 के दशक में मोहम्मद रफी के साथ 140 से अधिक युगल गीत गाए। श्रोताओं, सुमन जी के बारे में बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। श्रोताओं, 31 मई 1926 को 90 वर्ष की उम्र में सुमन कल्याणपुर जी का वो मधुर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, पर उनकी मीठी आवाज आज भी उनके गीतों के माध्यम से हमारे कानों में रस घोलती रहेगी। आकाशवाणी परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और इस गीत के साथ और इस गीत को आप सुनिए और आनंद लीजिए।

0: इस गीत के साथ ही आज के रजनीगंधा कार्यक्रम से ऐश्वर्य को दे अनुमति नमस्कार। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या दिल्ली से रिले की जाएगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाश

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौधा पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौधा के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।

0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी

0: Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है।
2: अभी समाचार दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिव हरी का।

सिलसिला फिल्म के इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे।

और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

भारी ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और राय मुखर्जी।

साल 2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हासन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में राम जी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। राम जी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार।

0: एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था, लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।
1: जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल,
2: कुछ किदा, कुछ किदा, कुछ किदा, ये
1: ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल,
2: कुछ किदा, कुछ किदा, कुछ किदा, ये
1: लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शान संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सिक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति की

निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थी और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना।

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर, स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया की। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है, हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

0: न होती।
1: हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा। हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बारे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरे यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहर रुख अलैला देखो।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हमने समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो ज़ौक साहब फरमाते हैं, इश्क का ज़ौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का ज़ौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो दिखाई दे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: मन रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही देर में दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनी

कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत

0: कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।